मीडियम वेव 233.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स, और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 18वीं तिथि तदनुसार 9 जुलाई सन 2026 प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आर के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय का गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वागत समारोह में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
2: सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने बताया कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती और विविधता दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में कल 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी

0: विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के चालू वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। IMF द्वारा कल जारी की गई प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार अगले वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 6.4% की मामूली वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने CSIR UGC NET जून 2026 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। अमरीकी सेना ने कहा है कि वो ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पहुंचने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से वर्षा जारी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है गैर कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं समूह स्वर में ये देशगान।

लीजिए प्रस्तुति कार्यक्रम आराधना में अगला भजन राजेंद्र काजरू के स्वर में, धुन दिया है अनिल शर्मा ने, शब्द रचना है चंद्र प्रकाश कौशिक की।

अनुराधा पौड़वाल के स्वर में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भजन। संगीत निर्देशन है सरोज नंदा का। रचनाकार हैं रमेश सोनी और डॉक्टर दीपक स्नेह।

सुरेश वाडकर और रामशंकर के स्वर में आइए सुनते हैं कार्यक्रम आराधना की अंतिम पेशकश। शब्द रचना है राजेंद्र भट्ट की।

0: इस प्यारे से भजन के साथ ही कार्यक्रम आराधना यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु में आज का विचार कर्म विषय पर। वाचन एवं संकलन है जयमाला सिंह का।
1: वास्तविक उद्देश्य केवल सपने देखना नहीं बल्कि उन्हें अपने कर्मों के माध्यम से साकार करना है। कर्म ही मनुष्य की पहचान बनाता है। व्यक्ति का जन्म परिस्थितियों से हो सकता है किंतु उसका भविष्य उसके कर्मों से निर्धारित होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में कर्म को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कर्म का सामान्य अर्थ है किसी भी प्रकार का कार्य या क्रिया। मनुष्य जो सोचता है, बोलता है और करता है, वह सब कर्म की श्रेणी में आता है। अच्छे कर्म सुख, सम्मान और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और पतन का कारण बनते हैं। भारतीय दर्शन में कर्म को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। इसलिए बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक करना चाहिए। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में कर्म को जीवन का आधार माना गया है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका भविष्य और अंततः उसका आध्यात्मिक विकास होता है। कर्म केवल आज का परिणाम नहीं देता बल्कि जन्म जन्मांतर तक आत्मा की यात्रा को भी प्रभावित करता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सदैव शुभ कर्म, निष्काम कर्म और धर्मयुक्त कर्म करने की प्रेरणा दी है। आध्यात्मिक दृष्टि से कर्म वह है जो मन, वचन और शरीर से किया जाए। केवल बाहरी कार्य ही नहीं बल्कि हमारी भावना, नियत और विचार भी कर्म है। यदि कर्म ईश्वर को समर्पित होकर, अहंकार और स्वार्थ से मुक्त होकर किया जाए तो वही कर्म योग बन जाता है। भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म को कुशलता, समर्पण और संतुलित मन के साथ करना ही योग है। अच्छे कर्म मन को पवित्र, शांत और प्रकाशमान बनाते हैं, जबकि बुरे कर्म मन में अशांति, भय और मोह उत्पन्न करते हैं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन का पहला कदम है विचारों, वाणी और

0: आचरण की शुद्धता। संतों ने कहा है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। भूखे को भोजन देना, दुखी को सांत्वना देना, सत्य बोलना, क्षमा करना, प्रेम और करुणा रखना, ये सभी आध्यात्मिक कर्म हैं। ऐसे कर्म ईश्वर की सच्ची आराधना माने गए हैं। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। धन, पद और वैभव यहीं रह जाते हैं, किंतु मनुष्य के शुभ कर्म ही उसके साथ चलते हैं। इसलिए जीवन का लक्ष्य केवल सफलता नहीं बल्कि ऐसा चरित्र बनाना होना चाहिए जो आत्मा को परमात्मा के निकट ले जाए। जीवन का प्रत्येक क्षण ईश्वर का दिया हुआ अवसर है। यदि हम प्रत्येक कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित मानकर करें तो हमारा जीवन सार्थक बन जाता है। कर्म ही आत्मा की उन्नति का मार्ग है। कर्म ही जीवन का वास्तविक धर्म है। मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए क्योंकि कर्म ही उसके व्यक्तित्व, चरित्र और भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि हम निस्वार्थ भाव, परिश्रम और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करें तो व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्थापित हो सकता है। जब कर्म में सेवा, मन में श्रद्धा, वाणी में सत्य और हृदय में प्रेम हो तब वही जीवन आध्यात्मिक साधना बन जाता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु में आज का विचार कर्म विषय पर। वाचन एवं संकलन था जयमाला सिंह का। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम श्री रामचरितमानस का गायन। मुख्य गायन स्वर है प्रसाद पार गावानकर और साथी का। संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।
2: एपिसोड नंबर 119

अवध के निकटवर्ती प्रदेशों तथा भारत के कतिपय अन्य भागों में विवाह संस्कार संपन्न हो जाने के बाद दुल्हा दुल्हन को कोहबर में ले जाए जाने का विधान प्रचलित है, जहां कुलदेवता की पूजा की जाती है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोकाचार का गान किया गया है। उधर सुहागिनी स्त्रियां कुंवर और कुमारियों को कोहबर में ले आती हैं, जहां कुलदेवता की पूजा अर्चना में मंगल गान के साथ लौकिक रीतियां संपन्न हो रही हैं। यहां पर वर वधु एक दूसरे के मुंह में कौर खिलाते हैं, जिसे लहकौर कहा जाता है। सुहागिनों के रूप में उपस्थित पार्वती श्री राम को तथा सरस्वती सीता को लहकौर सिखा रही हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन। मुख्य गायन स्वर था प्रसाद पारगावनकर का और संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बात। सामूहिक सुझाव का विषय है सूक्ष्म सिंचाई तकनीक।
1: किसान भाइयों, आज हम खेती की एक ऐसी आधुनिक तकनीक पर चर्चा करेंगे जो वर्तमान समय में जल संकट, बढ़ती सिंचाई लागत और बदलती जलवायु की परिस्थितियों में किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है। इस तकनीक का नाम है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, जिसमें मुख्य रूप से ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई शामिल है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है पानी की कमी। कई क्षेत्रों में भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, वर्षा अनियमित हो गई है और सिंचाई के पारंपरिक तरीके अधिक पानी की खपत करते हैं। ऐसे समय में प्रत्येक बूंद पानी का सही उपयोग करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म सिंचाई तकनीक विकसित की गई है। इस तकनीक का उद्देश्य है कि पौधों को उतना ही पानी मिले जितनी वास्तव में आवश्यकता है। इससे पानी की बचत होती है, पौधों की वृद्धि बेहतर होती है और उत्पादन की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं ड्रिप सिंचाई की। इस प्रणाली में पाइपों और ड्रिपर की सहायता से पानी सीधे पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद पहुँचाया जाता है। इससे खेत के केवल उसी भाग में नमी रहती है जहां पौधे लगे होते हैं। परिणाम स्वरूप पानी की बर्बादी नहीं होती और खरपतवार भी कम उगते हैं। ड्रिप सिंचाई विशेष रूप से सब्जियों, फलदार पौधों, गन्ना, कपास, मिर्च, टमाटर, अंगूर, अनार, केला, पपीता और अन्य बागवानी फसलों के लिए अत्यंत लाभदायक मानी जाती है। आज कई किसान धान और अन्य फसलों में भी संशोधित ड्रिप प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्प्रिंकलर सिंचाई की। इसमें पाइप और स्प्रिंकलर की सहायता से पानी वर्षा की बूंदों की तरह पूरे खेत में फैलाया जाता है। यह तकनीक गेहूं, चना, मसूर, मूंग, मूंगफली, चारा फसल और हल्की रेतीली मिट्टी वाले क्षेत्रों में काफ़ी

0: उपयोगी है। सूक्ष्म सिंचाई का सबसे बड़ा लाभ पानी की बचत है। सामान्य सिंचाई की तुलना में 30 से 60% तक पानी बचाया जा सकता है। जहां पहले एक सिंचाई में कई घंटे लगते थे, वहीं सूक्ष्म सिंचाई से कम समय में बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। पानी के साथ साथ बिजली और डीजल की भी बचत होती है। जब कम पानी पंप करना पड़ता है तो ऊर्जा की खपत भी कम होती है और इससे खेती की लागत घटती है और किसानों की आय बढ़ने में सहायता मिलती है। इस तकनीक का एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी है कि खेत में अधिक पानी भरने की समस्या नहीं होती। कई बार अधिक सिंचाई के कारण पौधों की जड़ें सड़ जाती है या पोषक तत्व बह जाते हैं। ड्रिप प्रणाली इस समस्या को काफ़ी हद तक रोकती है। यदि किसान चाहें तो ड्रिप प्रणाली के माध्यम से घुलनशील उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं। इसे फर्टिगेशन कहा जाता है। इससे उर्वरक सीधे जड़ों तक पहुंचते हैं, उनकी बर्बादी कम होती है और पौधों को पोषण अधिक प्रभावी ढंग से मिलता है। सूक्ष्म सिंचाई अपनाने से खरपतवार भी कम उगते हैं क्योंकि पूरे खेत में नमी नहीं फैलती। इससे निदाई गुड़ाई पर होने वाला खर्च भी कम होने लगता है। हालांकि इस प्रणाली को अपनाते समय कुछ सावधानियां भी आवश्यक हैं। पानी स्वच्छ होना चाहिए ताकि ड्रिपर बंद ना हो। समय समय पर फिल्टर की सफाई करनी चाहिए और पाइपलाइन का निरीक्षण करते रहना चाहिए। यदि कहीं रिसाव हो तो उसे तुरंत ठीक करना चाहिए। आज केंद्र और राज्य सरकारें सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को अनुदान भी उपलब्ध कराती। इच्छुक किसान अपने जिले के कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बदलते मौसम में सूक्ष्म सिंचाई का महत्व बढ़ गया है। कभी कम वर्षा, कभी अधिक वर्षा और कभी लंबे सूखे जैसी परिस्थितियों में पानी का वैज्ञानिक प्रबंधन ही खेती को सुरक्षित बना सकता है। भविष्य की खेती वही होगी जो कम संसाधनों में अधिक उत्पादन कर सके।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात। सामयिक सुझाव का विषय था सूक्ष्म सिंचाई तकनीक। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:50 हुए हैं। श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम विवरण का। आइए आपको आज के मुख्य आकर्षणों से अवगत कराते हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे सरगुजिया लोकगीतों का कार्यक्रम गुंजे जंगल। साथ ही कार्यक्रम गोधुली आप सुन सकेंगे 6:20 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे प्रातः 7:15 पर। और सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा सुन सकेंगे 7:05 पर। जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा आप सुन सकेंगे प्रातः 7:30 पर। साथ ही कार्यक्रम साहित्य पत्रिका आप सुन सकेंगे सुबह 8:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन का आनंद आप ले सकेंगे आज सुबह के ठीक 9 बजे। साथ ही फोन इन कार्यक्रम गाँव कर गीत का प्रसारण समय होगा सुबह 10 बजे। श्रोताओं के फरमाइशों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद का आनंद आप ले सकेंगे दिन के 11:05 पर। और NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय होगा दोपहर के ठीक 12 बजे। साथ ही शीर्षक पर आधारित कार्यक्रम चयन आप सुन सकेंगे दोपहर 12:30 पर। कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण होगा दोपहर 1:05 पर। और महिलाओं के लिए कार्यक्रम घर आंगन आप सुन सकेंगे दोपहर 1:10 पर। साथ ही युवा श्रोता कार्यक्रम युवाणी सुन सकेंगे 5:30 पर। और ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल आज सजेगा तय समय 7:20 पर। श्रोताओं के ईमेल पर आधारित कार्यक्रम ईमेल की गुंज आप सुन सकेंगे दोपहर 1:40 और रात्रि 9:30 पर। साथ ही प्रायोजित कार्यक्रम दीदी की गोठ आप सुन सकेंगे दोपहर के ठीक 2 बजे। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा का आनंद आप ले सकें।

सुनेंगे दोपहर 2:45 पर। गैर फिल्मी और फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या आप सुन सकेंगे शाम 5:05 पर, और फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी का आनंद आप ले सकेंगे शाम 6:30 पर। साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन सकेंगे रात्रि 9:15 पर। सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि के ठीक 8:00, और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी आप सुन सकेंगे रात्रि के ठीक 10:00, जिसमें आज आप सुनेंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के बांसुरी वादन में राग बागेश्री। साथ ही श्रोताओं के फरमाइशों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन आप सुन सकेंगे रात्रि के ठीक 10:30 पर। श्रोताओं, ये थे हमारे आज के मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स, और एफएम बैंड

0: आधारित फरमाइसी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन आप सुन सकेंगे रात्रि के ठीक 10:30 पर। श्रोताओं, ये थे हमारे आज के मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी त्रिराष्ट्र यात्रायाः द्वितीये चरणे ऑस्ट्रेलिया देशस्य मेलबोर्न नगरं सम्प्राप्तवान्। ह्यः तस्य आगमन समये ऑस्ट्रेलिया देशस्य नगरावासन मंत्री क्लेयर ओ नील इत्येषा प्रधानमंत्रिणः मोदिनः स्नेहपूर्वकं स्वागतम् अकरोत्। प्रधानमंत्री अवदत् यत् इयं यात्रा भारताऑस्ट्रेलिया समग्र सामरिक सहभागितायाः ऊर्जां वर्धयिष्यति इति। सामाजिक संचारपटले एकस्मिन् संदेशे श्रीमोदी अवदत् यत् असौ ऑस्ट्रेलिया देशस्य समकक्षेण एन्थनी एल्बनीज इत्यनेन सह संवादम् आचरिष्यति। असौ एतदपि कथितवान् यत् भारताऑस्ट्रेलिया सहभागित्वस्य महत्वपूर्ण स्तम्भेन भारतीय प्रवासिना सह संवादाय अवसरः अपि प्राप्स्यामि इति। यात्रावधौ श्रीमोदी तृतीये भारताऑस्ट्रेलिया वार्षिक सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। असौ भारताऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंचे अपि भागं ग्रहीष्यति, यत्र सः उभय देशयोः प्रमुखानां व्यापार नेतृणां समागममपि संबोधयिष्यति। भारत म्यांमार देशौ द्वैपाक्षिक सुरक्षा सहकारिता विषये चर्चां कृतवन्तौ। द्वैपाक्षिक संवाद व्यवस्थायाः अन्तर्गते प्रगतिं च समीक्षितवन्तौ। भारत म्यांमार देशयोः मध्ये त्रयोविंशतितमं द्विदिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलनम् अद्य ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नम्। गृहमन्त्रालयः अवदत् यत् भयोत्पादनं विद्रोहः मादकद्रव्याणां क्रयविक्रयणं शस्त्राणां क्रयविक्रयणं मानवव्यापारं वन्यजीवानां क्रयविक्रयणम् इत्यादीनां संघटितानां अपराध प्रकाराणां निवारणार्थं सहकारिता विषये उभयपक्षौ चर्चां कृतवन्तौ। भारत रूस देशाभ्यां ह्यः संयुक्त राष्ट्र ब्रिक्स यूरेशियन समूह शंघाई सहयोग संघटनानि समेत्य बहुपाक्षिक मंचेषु आतंकवाद रोधी सहयोगम् इतोपि सुदृढीकरणस्य प्रतिबद्धता पुनरुद्घाटिता। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूहस्य चतुर्दशोपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्यां आयोजितमासीत्। द्वौ देशौ सीमापारे आतंकवादं समेत्य आतंकवादस्य सर्वेषां रूपाणाम् अभिव्यक्तिनाञ्च निन्दां कृतवन्तौ। भारतीयान्तरिक्ष अनुसन्धान संघटनम् मध्यप्रदेशस्य श्योपुरनगरस्य एरियल डिलीवरी रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इत्यस्य ड्रॉप जोन इत्यत्र गगनयान उपक्रमस्य कृते महत्वपूर्णम् एकीकृतम् IMAT इति परीक्षा सफलतया आयोजिता। भारतर्तु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् आगामिषु त्रिषु दिनेषु नैऋत्य प्रावृषे उत्तर अरबसागर राजस्थाने गुजरात हरियाणा पंजाब इत्येतेषां शेष भागेषु अग्रे गन्तुं स्थितिः अनुकूलः अस्ति। अद्य अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय बिहार पूर्व राजस्थान मध्य प्रदेश उप हिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम पश्चिमोत्तर प्रदेशानां केषुचित् भागेषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतु विभागेन पूर्वानुमानितम्। जम्मू कश्मीर प्रशासनेन ह्यः श्री अमरनाथजी यात्रामुद्दिश्य एका नवीना निर्देशिका प्रसारिता, यस्यां सर्वहि तीर्थयात्रिभिः पंजीकरण प्रक्रियायाः अथ सुरक्षा मार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं दृढतापूर्वकं च पालनं कर्तुं समादिष्टम्।

0: आकाशवाण्याः जम्मूवार्ताहरैः विज्ञापितं यत् सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्देशानुसारं निर्धारिता यात्रिणां प्रतिदिनस्य संख्या सीमा सम्प्रत्योपि पूर्णतो प्रवृत्ता वर्तते। श्रद्धालवः परामृष्टाः यत् यात्रा प्रारम्भात् एव पूर्वमेव अग्रिम पञ्जीकरणं करणीयम् अथ अनुमतिपत्रे उल्लिखिते दिनांके एव यात्रा आरम्भणीया। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् अनुपदमेव पञ्जीकरणस्य सुविधा अत्यन्तं सीमितसंख्यासु एव उपलब्धा अस्ति। इति वार्ताः।
1: अभी आप सुन रहे थे संस्कृत समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है सरगुजिया लोकगीतों का कार्यक्रम गुंजे जंगल। कार्यक्रम की शुरुआत में ये सुनते हैं रामदेव राजवाड़े और साथियों के स्वर में रामचर्चा कर्मा गीत।

कार्यक्रम गूंजे जंगल में ये सुनते हैं भुवनेश्वर राम राजवाड़े और साथियों के स्वर में ये देवी भजन।

मुनेसुराम राजवाड़े और साथियों के स्वर में इस देवी भजन के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम गुंजे जंगल यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 7:15 हुए हैं। अपे से सुगम संगीत का कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं चंदनदास के स्वर में ये गजल। संगीत निर्देशन है चंदनदास जयदेव कुमार का, शब्द रचना है रामल सेघल की।

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला विषय। चंदन दास जयदेव कुमार के स्वर और संगीत निर्देशन में शब्द रचना है नसीम रिफात की।

0: इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: संपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट प्रतिदिन शाम 5 बजे आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। यह कार्यक्रम एफएम रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर इसकी पहुँच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोट। सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोट, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। जिला स्तरीय रोजगार मेला 13 जुलाई को 1470 पदों पर होगी सीधी भर्ती। बलरामपुर कलेक्टर के मार्गदर्शन में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र बलरामपुर द्वारा 13 जुलाई 2026 सोमवार को प्रातः 10:30 से जनपद पंचायत बलरामपुर के सभा कक्ष में एक दिवसीय विशाल एवं निःशुल्क जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेले में चिकित्सा, एसआर हॉस्पिटल दुर्ग, तकनीकी, वेदांता स्किल स्कूल एवं बैंकिंग, नीट इंटरैक्ट फाइनेंस बैंकिंग सहित विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी। रोजगार मेले में 10वीं 12वीं IIT पॉलिटेक्निक एवं स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सीधी भर्ती की जाएगी, जिसमें टेक्नीशियन के 150, सेल्स एग्जीक्यूटिव के 50, फिटर, वेल्डर, सोलर सिस्टम इंस्टॉलर, प्लम्बर एवं टेक्नीशियन के 95, सुपरवाइजर के 75, सिक्योरिटी गार्ड के 620, कंप्यूटर ऑपरेटर के 40, डॉक्टर के 70, मेडिकल टेक्नीशियन के 35, नर्सिंग के 35, मैनेजर के कुल 55, कुल मिलाकर 1470 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिला रोजगार अधिकारी ने जिले के पात्र एवं इच्छुक युवाओं से अपील की है कि वे अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, रोजगार पंजीयन एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर रोजगार मेले में उपस्थित होकर रोजगार का अवसर का लाभ लें। साथियों, आइए सुनते हैं इसी के साथ कार्यक्रम का पहला गीत मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में। संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, रचनाकार है आनंद बख्शी और फिल्म का नाम है सुहाग।

पीएम श्री एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पोलीडेई में लेटर एंट्री से प्रवेश का सुनहरा अवसर। कक्षा सातवीं एवं ग्यारहवीं की रिक्त सीटों पर आवेदन शुरू। 17 जुलाई को होगा चयन परीक्षा। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली के अधीन संचालित पीएम श्री एकलव्य आदर्श शैक्षणिक आवासीय विद्यालय पोलीडेई विकासखंड खड़गवां जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए लेटरल एंट्री के माध्यम से कक्षा सातवीं एवं ग्यारहवीं की रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। विद्यालय प्रबंधन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इच्छुक एवं पात्र छात्र छात्राएं निर्धारित प्रारूप में ऑफलाइन आवेदन कर प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। जारी सूचना के अनुसार विद्यालय में कक्षा सातवीं में कुल 3 रिक्त सीटें उपलब्ध हैं, जिनमें 1 बालक 2 बालिकाओं को प्रवेश दिया जाएगा। वहीं कक्षा ग्यारहवीं में कुल 4 रिक्त सीटें हैं, जिनमें 3 बालक और 1 बालिका का चयन किया जाएगा। कक्षा सात में प्रवेश चयन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जबकि कक्षा ग्यारहवीं में प्रवेश कक्षा दसवीं के प्राप्तांक एवं मेरिट के आधार पर होगा। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेज सहित 14 जुलाई 2026 तक विद्यालय कार्यालय पीएम श्री एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पोलीडेई में जमा कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा का आयोजन 17 जुलाई 2026 को प्रातः 11:30 से दोपहर 1:30 तक विद्यालय परिसर में किया जाएगा। प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी तथा राज्य द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग का सदस्य होना अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य विद्यालय से निष्कासित नहीं होना चाहिए। आवेदन के साथ निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र में विद्यार्थी एवं अभिभावक की जानकारी, आधार नंबर, पता, जन्मतिथि, शैक्षणिक विवरण सहित अन्य आवश्यक जानकारियां भरनी होगी तथा निर्धारित घोषणा पत्र पर अभिभावक के हस्ताक्षर भी आवश्यक होंगे। विद्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया, पात्रता, आरक्षण, चयन नियम एवं अन्य विस्तृत जानकारी विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट https://amrspodi.org.in/index.php पर उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र भी इसी वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी विद्यालय के ईमेल eklavyakorian@gmail.com अथवा मोबाइल नंबर 7987200995 पर संपर्क कर सकते हैं। विद्यालय प्रबंधन ने पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। साथियों, इसी के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा की अगली पेशकश फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस से, जिसमें हसरत जयपुरी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने और आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने।

डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार 2026 से सरगुजा जिले के उत्कृष्ट किसानों से 31 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित। कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट नवोन्मेषी और अनुकरणीय कार्य करने वाले प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य के सर्वोच्च सम्मान डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सरगुजा जिले के सभी पात्र एवं इच्छुक किसान 31 जुलाई 2026 सायं 5 बजे तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिले के ऐसे किसान जो पारंपरिक खेती से हटकर कृषि में नवाचार, जैविक प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण, उन्नत कृषि यांत्रिकीकरण, जल संरक्षण या कृषि विपणन में क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं, वे आवेदन के पात्र हैं। इच्छुक कृषक आवेदन पर सरगुजा जिले के कार्यालय उप संचालक कृषि या अपने संबंधित विकास खंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म विभाग की आधिकारिक वेबसाइट agriportal.cg.nic.in पर उपलब्ध है। उन्होंने किसान को समय सीमा के भीतर अपने आवश्यक दस्तावेज, कृषि भूमि के ऋण पुस्तिका, नवाचार से संबंधित फोटोग्राफ एवं प्रमाण पत्र के साथ आवेदन जमा करने कहा है। अधिक जानकारी के लिए नज़दीकी विकास खंड कृषि कार्यालय, उप संचालक कृषि या आधिकारिक वेबसाइट agriportal.cg.nic.in का अवलोकन कर सकते हैं। साथियों, इसी के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म पूरब और पश्चिम से आवाज़ महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर और मनिहर उदास के, धुन दिया है कल्याण जी आनंद जी ने, गीतकार हैं संतोष आनंद।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 077774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: श्रोताओं, इसी के साथ जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और

0: पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सर्वोच्चा यही समाप्त हुआ।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: मीडियम पेपर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। कुछ ही क्षण में समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
5: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
6: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
8: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
7: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
8: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी

0: एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
2: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स हैं, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
3: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा

0: की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लोकसत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से PF खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में

0: खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसेस इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीईओज फोरम इन मेलबर्न, सेज इट इज नेचुरल एंड एसेंशियल फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टू मूव फॉरवर्ड एज ट्रस्टेड पार्टनर्स इन अ वर्ल्ड मार्क्ड बाय अनसर्टेनिटी, सप्लाई चेन डिसरप्शंस एंड एनर्जी क्राइसिस। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू ऑल्सो होल्ड टॉक्स विद हिज ऑस्ट्रेलियन काउंटरपार्ट एंथनी अल्बनेजी इन मेलबर्न टुडे। Centre approves procurement of Khopra and Totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. The Prime Minister further said economic cooperation and trade agreement concluded in record time in 2022 has further strengthened the economic ties between the two countries.
2: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
1: Prime Minister Modi also noted the complementarities between the Indian and Australian economies, underlining vast opportunities available in India across a number of sectors.
2: हमारी पार्टनरशिप केवल दोनों राजधानियों या कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें हमारे राज्यों, छोटे बड़े शहरों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों सभी के स्टेक होल्डर्स बनाना होगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेंथ, उसको हम उड़ीसा और गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं। क्वींसलैंड और टेस्मेनिया की क्लीन एनर्जी और एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज, पंजाब और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रिन्यूअल कॉरिडोर और फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को नई गति दे सकते हैं।
1: Mr. Modi invited Australian investors to take advantage of opportunities for long-term investments in the country and also welcomed the growing presence of Australian universities in India.
2: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: Following the CEO's forum, Prime Minister Modi also addressed the Economic Roadmap Business Event, a large gathering of over 200 CEOs and business leaders from both sides. Speaking about natural synergies between India and Australia, he highlighted that shared democratic values, a common vision for the Indo-Pacific,

0: singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: अभी आप सुन रहे थे मॉर्निंग न्यूज, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8:30 हैं हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम साहित्य पत्रिका।

0: छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। मशहूर कवि और गीतकार गोपाल दास नीरज की इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत है श्रोताओं आप सभी का साहित्यिक पत्रिका साहित्यिकी में। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका साथी अक्षय। स्वीकार कीजिए प्यार भरा अभिवादन। नमस्कार श्रोताओं, आज की हमारी साहित्यिकी में हमारे साथ उपस्थित हैं सरगुजा के दो ऐसे साहित्यकार जिन्हें यूं तो किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्हें हमने सरगुजा के विविध मंचों पर हिंदी की कविताओं का पाठ करते हुए सुना है। साथ ही साथ ये वो चिराग हैं जो आज भी सरगुजा के साहित्य को लगातार रोशन कर रहे हैं। मैं आज की साहित्यिकी में स्वागत करता हूँ श्री संतोष दास सरल जी का और साथ ही डॉक्टर अंचल सिन्हा का।
1: नमस्कार सर।
0: जी नमस्कार। तो बिल्कुल आज जिस विषय पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं वो है सरगुजा में हिंदी साहित्य। आप किस तरह से सरगुजा में हिंदी साहित्य का वर्तमान समय में हाल देख सकते हैं, कुछ इस बारे में बताएं। संतोष जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे।
2: धन्यवाद अक्षय जी। पहले तो मैं वर्षा ऋतु के आगमन पर कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात प्रारंभ करना चाहूंगा।
0: जी।
2: यह वर्षा की छमछम बूंदों ने यह कैसा राग सा छेड़ा है, मन के भीतर उमड़ रही सुंदर इच्छाओं का घेरा है, मन भावन मधुर हो स्वप्न नव ऋतु नवल एकात्म हो, विस्मृत हो स्मृतियां शेष प्रकृति पावन तादात्म हो, तन मन है संग प्रति क्षण यह अद्भुत प्राकृतिक बेला है, नव जीवन हुआ अंकुरित नवधा अनुभूति अलबेला है।
0: वाह, बहुत अच्छी पंक्तियां आपने सुनाई,
2: आपने आमंत्रित किया, इसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: जी,
2: निश्चित रूप से आपने जो प्रश्न पूछा है कि सरगुजा में हिंदी साहित्य की क्या भूमिका है।
0: जी,
2: और मैं तो ये कहूंगा कि न केवल सरगुजा में बल्कि पूरे विश्व में
0: जी
2: हिंदी साहित्य की एक अलग पहचान है। और यदि मैं सरगुजा के परिदृश्य में बात करूं तो हमारे सरगुजा में भी बहुत बड़े बड़े कवि हुए हैं जिनसे जो नए साहित्यकार हैं, नवोदित साहित्यकार हैं, वो बहुत कुछ सीखते हुए आज आगे बढ़ रहे हैं। मैं नाम लूंगा राम प्यारे रसिक जी।
0: जी,
2: ऐसे अनेकों कवि हैं जिन्होंने सरगुजा का नाम रोशन किया है, और न केवल हिंदी साहित्य में बल्कि विशेष रूप से सरगुजा साहित्य में भी। उनका लेखन अद्भुत रहा है, और अभी हाल ही में रायपुर में जब एक सांस्कृतिक समागम हुआ, साहित्यिक समागम का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ शासन की तरफ से
0: जी,
2: उसमें भी शिरकत करने का मौका यहाँ के साहित्यकारों को मिला था।
0: बिल्कुल।
2: और मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि वहाँ पर अनिरुद्ध नीरव जी के नाम से एक मंडप तैयार था
0: जी,
2: और उस मंडप में उनकी पूरी जीवनी वहाँ पर डिस्प्ले हो रही थी, और हम सब ने उस मंडप में जा करके कविता पाठ भी किया, और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के अनन्य कवि अलग अलग जगहों से आए, दूर दराज से आए, सभी साहित्यकार कवि वहाँ पर गोष्ठियाँ कर रहे थे, तो देखकर बहुत ही गर्व और आनंद की अनुभूति हुई। तो मैं तो यही कहूँगा कि सरगुजा साहित्य और सरगुजा हिंदी साहित्य बहुत समृद्ध है, और इसको जितनी अधिक जितनी ऊंचाई तक यहाँ के साहित्यकार लेकर के गए हैं, मुझे लगता है वो पूरे भारत देश में उन्होंने अपना नाम कमाया है, और सरगुजा की इस

0: पावन मिट्टी को नमन करता हूँ मैं कि मैं भी यहाँ पैदा हुआ और हमें भी ऐसे साहित्यकारों का सानिध्य मिला और उनसे सीखने समझने का अवसर भी मिला। और नवोदित साहित्यकार भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, मुझे लगता है बहुत ही उज्जवल भविष्य है, खासकर सरगुजा अंचल में जो हिंदी साहित्य है उसकी बात करें।
1: निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी बात बताई कि देखिए सरगुजा जो है साहित्यिक रूप से सदा ही हम कहते हैं कि समृद्ध रहा है, और सरगुजा में चाहे हिंदी साहित्य हो या सरगुजिया साहित्य हो, इसका स्थान पूरे विश्व में बहुत ऊंचा है, पूरे देश में बहुत ऊंचा है। अब मेरा अगला सवाल डॉक्टर अंचल से है कि अभी संतोष जी ने हमें बताया कि जो साहित्य है उससे युवा बहुत अधिक प्रेरणा ले सकते हैं, तो आज के समय में जब हम हिंदी साहित्य की मूलतः बात करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे बीच सरगुजिया साहित्य का एक अच्छा माहौल छाया हुआ है, क्योंकि हम सरगुजा के निवासी हैं, इसमें बहुत सारे गीतकार, बहुत सारे गायक, और सरगुजिया साहित्य का कुल मिलाकर अभी जो है अच्छा समय है, और ऐसा कहना चाहिए कि अच्छी तरह से उसका विकास हो रहा है। पर जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य के प्रति युवा कम आकर्षित लगते हैं, एक क्षेत्र ऐसा है युवाओं का जो हिंदी साहित्य से कम जुड़ता हुआ दिखता है, तो किस तरह से आप लोगों का प्रयास रहता है कि कैसे युवाओं को अधिक हिंदी साहित्य की ओर जोड़ा जाए, या आपके क्या विचार हैं इस विषय पर?
2: धन्यवाद अक्षय जी। सरगुजा की माटी साहित्य के लिए बहुत ही उर्वर है
1: जी,
2: और निसंदेह गीत के माध्यम से आपको सरगुजा का लोकगीत और लोक साहित्य आपको दिखता है।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि पढ़ने के प्रति रुझान कम हुआ है
1: जी,
2: किताबें पढ़ने के प्रति लोग YouTube Instagram पे सुन लेते हैं
1: जी,
2: इसलिए सरगुजा में हिंदी साहित्य जो लिखा जा रहा है
1: जी
2: वो सामने नहीं आ पा रहा है। ऐसा नहीं है कि साहित्य सृजन नहीं हो रहा है, बहुतायत में है, अच्छी संख्या में है, एक एक रचनाकार की तीन तीन चार चार किताबें आ रही हैं और हर वर्ष 15-20 किताबें आ ही जाती हैं। कुछ नाम मैं लेना चाहूंगा, जैसे श्याम कश्यप बच्चन जी का नाम संतोष जी ने भी लिया
1: जी,
2: वो राष्ट्रीय स्तर पे अभी हाल में ही पुरस्कृत हुए। अक्षत गुप्ता से आप परिचित होंगे
1: जी, बिल्कुल,
2: उनकी किताबें बेस्ट सेलर में चल रही हैं
1: जी,
2: तो है सरगुजा की माटी में वो दम तो है कि वो हिंदी को बहुत ऊपर ले जा रही है। थोड़ी पढ़ने के प्रति जो रुझान कम हुआ है वो एक कमी दिखती है, उस कमी को हम लोग चूंकि अब वरिष्ठ की श्रेणी में आ गए हैं
1: बिल्कुल,
2: तो हमारे द्वारा काव्य गोष्ठियों का लगातार आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि कथा साहित्य और इनके लिए तो समय की जरूरत पड़ती है, इस आपाधापी के माहौल में उतना समय दे पाना युवाओं के लिए, और वो भी वैसे वैसे युवाओं के लिए जो अपनी रोजगार की चिंता में लगे हुए हैं
1: जी,
2: या तो अध्ययन कर रहे हैं या रोजगार में रोजगार की तलाश में है, उनसे हम ये उम्मीद करें कि वो तीन तीन चार चार घंटे पाँच पाँच घंटे बैठ के साहित्य का मंथन करें, ये होना थोड़ा कठिन है। लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, कम समय के लिए जो कवि गोष्ठियों का आयोजन होता है उसमें भरपूर संख्या में आते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत छोटे काव्य गोष्ठियों में भी हमको समेटना पड़ता है। संतोष जी तो अक्सर मंच संचालन करते हैं
1: जी,
2: तो उनको ये कहना पड़ता है कि आप अपनी एक प्रतिनिधि रचना सुनाइए
1: जी,
2: तो हमारे पास हिंदी साहित्य को सुनने सुनाने के लिए भरपूर समय है, भरपूर लोग हैं, पढ़ने के लिए लोग नहीं, प्रकाशित चीजों को पढ़ने के लिए लोग नहीं है। तो हमारा प्रयास है, अभी एक बहुत इनिशियल पोजीशन पे है, हम शुरू करने जा रहे हैं जो साहित्यिक विशेष करके शिक्षक वर्ग जो है, आप शायद देखे होंगे मंथली एक मैगजीन निकालने जा रहे हैं जिसमें जो भी रचनाएं हैं
1: जी,
2: वो हर माह अब हम नवोदित रचनाकारों से, विशेषकर जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक टीचर्स एसोसिएशन करके है वो एक पत्रिका स्टार्ट कर रही है, ताकि हम गांव से या दूर क्षेत्रों से जो हैं वो, इसमें एक शासकीय उपक्रम भी किया गया है, आप शायद उससे जुड़े हुए भी हैं,
1: ओजस्वी भारत
2: में काफी प्रयास किया और काफी दूरस्थ क्षेत्रों से रचनाकार निकल के और छोटे बच्चे युवा निकल किशोर निकल कर आ रहे हैं
1: बिल्कुल,
2: तो वो एक है। मैंने इसलिए शुरू में ही कहा कि सरगुजा की माटी हिंदी साहित्य के लिए

0: बहुत उर्वर है और निसंदेह इस फसल को आप आगे जाकर लहलाते हुए देखेंगे।
1: निश्चित रूप से बहुत ही प्रेरक बात आपने कही कि पढ़ने में कमी हुई है, लेकिन आगे चलकर ये जो सरगुजा की साहित्यिक रूप से उर्वर भूमि है, इसमें विकास होगा और लोग हमसे जुड़ेंगे। अब आपसे मैं जानना चाहूँगा संतोष जी, कि सबसे पहले तो हम आपसे एक कविता ज़रूर सुनना चाहेंगे, लेकिन साथ ही मेरा एक प्रश्न भी है कि मंचीय कविताएं आप लोगों को मैंने प्रस्तुत करते हुए देखा है, आपका समूह है जिसमें आप सभी लोग मंचीय कविताएं प्रस्तुत करते हैं, और विविध कार्यक्रमों में हमने आपको देखा है, चाहे वो राज्योत्सव हो, चाहे वो मैनपाट का उत्सव हो, या फिर वो रामगढ़ उत्सव हो, इस तरह से विविध कार्यक्रमों में आप लोगों को मंचीय कविताओं का वाचन करते हमने सुना है, देखा है। तो क्या प्रयास रहता है आप लोगों का कि कैसे लोग कविताओं से या साहित्य से जुड़ सकें, कुछ इस बारे में बताएं।
2: देखिए, खासकर कार्यक्रमों की यदि मैं बात करूं तो पिछले दिनों युवा आयोग की तरफ से एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ
1: जी
2: और पूरे संभाग स्तर में एक प्रतियोगिता हुई जिसमें जज के रूप में मुझे भी अवसर मिला था बैठने का।
1: बिल्कुल,
2: और उसमें लगभग मुझे याद है 60 से ऊपर
1: जी
2: युवाओं ने हिस्सा लिया पूरे संभाग से,
1: बिल्कुल
2: और एक से एक प्रतिभावान युवा,
1: जी
2: हिंदी में अच्छा लिखने वाले, सरगुजिया में अच्छा लिखने वाले। और हम लोगों ने जिन लोगों का चयन किया यहाँ से जो विजेता हुए, उन्होंने प्रदेश स्तर में भी अपनी प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी भूमिका निभाई। और बहुत खुशी की बात रही कि सरगुजा संभाग से कोरिया की एक बच्ची है जिसने द्वितीय स्थान प्राप्त किया पूरे प्रदेश में, और विशेष रूप से हिंदी की कविता उन्होंने पढ़ी। मुझे लगता है ये जो समय है
1: जी
2: ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर हिंदी साहित्य के लिए। और हिंदी साहित्य को तो अभी अंचल जी ने बिल्कुल सही कहा, युवाओं को हिंदी साहित्य की तरफ आकर्षित करना पड़ेगा।
1: जी
2: वैसे तो कई युवा जिनकी जिनका इंटरेस्ट होता है पढ़ने लिखने में और साहित्य के प्रति, वो निश्चित रूप से अच्छा लिखे हैं, लेकिन ऐसे युवा जो आज की युवा पीढ़ी है जो मोबाइल में जिनका समय व्यतीत होता है और जो इंटरनेट में ज्यादातर लोग हैं, वो यदि कविता के प्रति साहित्य के प्रति आकर्षित नहीं हुए तो
1: जी
2: मुझे लगता है थोड़ा कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य को तो नुकसान होगा आने वाले समय में। लेकिन अभी से अभी कोशिश की जाए, प्रयास किए जाए, तो मुझे लगता है युवाओं को उस ओर आकर्षित किया जा सकता है। और ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम जैसे युवा आयोग ने प्रतियोगिता की, वैसे ही ऐसे छोटे छोटे मंच युवाओं को आकर्षित करने के लिए मुझे लगता है दिए जाने चाहिए। कविता लेखन को अवसर मिलना चाहिए और स्कूल कॉलेजों में जहाँ जहाँ पर बच्चे सीखते हैं
1: जी
2: और जहाँ पर वो गढ़ते हैं, उनको गढ़ा जाता है, मुझे लगता है वो बेस, वो आधार, वहाँ पर कविता बहुत ज़रूरी है। कविता लेखन सिखाना बहुत ज़रूरी है, कविता के प्रति इंटरेस्ट, साहित्य के प्रति जो रुचि है वो जगाना ज़रूरी है। मुझे लगता है ये बहुत आवश्यक है। और मैंने तो देखिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए अपनी कविता भी लिखी है
1: निश्चित,
2: और अंचल जी ने तो बहुत कई बार सुना भी है। युवा की परिभाषा मुझे
1: बिल्कुल
2: लिखा है,
1: जी
2: मैं उपजित करना चाहता हूँ। युवा की परिभाषा, युवा वो नहीं जो दिखता जवान हो, युवा वो नहीं तो बस जो बस दिखता जवान हो, युवा तो वो है जिसकी हथेली में जान हो, और युवा वो नहीं जिसका खून बहुत गर्म हो, युवा तो वो है जिसका सेवा ही धर्म हो, और युवा वो नहीं जिसके पास अनगिनत तर्क हो, युवा तो वो है जिसकी कथनी करनी में न फर्क हो, और युवा वो नहीं जिसकी जुबान पर प्रीतम का राग हो, युवा तो वो है जिससे सीने में सुनगती आग हो, और युवा वो नहीं जिसका हर दिन मस्ती का पर्व हो, युवा तो वो है जिसपे हर माँ बाप को गर्व हो, और युवा वो नहीं जो बस विदेशी सभ्यता की बात करे, युवा तो वो है जो अपनी संस्कृति को आत्मसात करे, और युवा वो नहीं जिसे खुद फेज मोटर भगाना आता हो, युवा तो वो है जिसे गिरे को उठाना आता हो,
1: वाह
2: और
1: बहुत
2: वो
1: अच्छा,
2: नहीं जो स्वयं पर घमंड अभिमान करे, युवा तो वो है जो नारी शक्ति बड़ों का सम्मान करे, और युवा वो नहीं जिसकी शाम मधहोशी में मस्त हो, युवा तो वो है जो दुखियों की सेवा में व्यस्त हो, और युवा वो नहीं जो मीठे ख्यालों सपनों में खो जाए, युवा तो वो है जो तन को मेहनत के पसीने में धो जाए, और युवा वो नहीं जो बस दौलत कमाने में टिक जाए, युवा तो वो है जो अपने देश की खातिर मिट जाए।
0: बहुत अच्छा,
1: बहुत बढ़िया,
2: और
1: बहुत बढ़िया।
2: युवा युवा तो बहती ठंडी हवा है, युवा तो बहती ठंडी हवा है, युवा तो बीमार की दवा है, युवा तो सुबह की सुनहरी धूप है, युवा विवेकानंद लक्ष्मीबाई।

0: का रूप है, युवा मन की शक्ति है, युवा शहीदों की देशभक्ति है, युवा वायु का वेग है, युवा रवि का तेज है, युवा देश प्रेम का गीत है, युवा सुमधुर संगीत है, युवा देश का अभिमान है, युवा भारत की पहचान है, युवा प्रगति का नारा है, युवा बेसहारों का सहारा है, युवा सुंदर विचार है, युवा जीवन का आधार है और युवा हम सब की आशा है। युवा की यही परिभाषा है, युवा की।
1: बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन कविता आपने हमारे श्रोता साथियों को सुनाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब कविताओं के इस क्रम में हम डॉक्टर अंचल सिन्हा से भी कोई कविता जरूर सुनना चाहेंगे, तो अगर आप भी हमारे श्रोता साथियों को।
2: बिल्कुल अक्षय जी, आपने मुझे अवसर दिया, कवि को और क्या चाहिए, कविता सुनाने के लिए मंच ही तो चाहिए।
1: जी बिल्कुल,
2: थोड़ी सी क्रांतिकारी चलेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: मैंने ये कविता अभी हाल ही में रामगढ़ महोत्सव पे सुनाई थी, मैं श्रोताओं के लिए प्रस्तुत करता हूँ। सीता का अंतिम कथन, ये मेरी कल्पना है कि रामायण के उस समय पे जब सीता ने धरती माँ को पुकारा, क्यों पुकारा होगा, आज के परिदृश्य में यदि देखें, या इसे रामायण की रिटेलिंग आप कह सकते हैं
1: जी।
2: सीता का अंतिम कथन। हे प्राणनाथ, हे प्राणनाथ, हे जगतपति, तुम ही मेरे आराध्य हो, इस जग में नहीं कोई स्मरणीय, केवल तुम ही मेरे साध्य हो, जहां मेरे नाथ वहीं मेरा स्वर्ग, वहीं मेरा जीवन, वहीं मेरा धर्म, तुम बिन अयोध्या भी वन समान, हर सुख लगता था निष्फल निष्काम। कल एक अनजान ने आरोप लगाया और तुमने उसे सत्य मान लिया, मेरे समर्पण, मेरे विश्वास, मेरे जीवन का मर्म भी जान लिया। ये एक नारी की व्यवस्था है जो हमारे सनातन में है। फिर मेरे प्रति यह कैसा वैराग्य, यह कैसा कठोर निर्णय लिया, मेरे गर्भ में पलते अपने ही अंश को पराई वाणी पर क्यों त्याग दिया। क्या इतना क्षीण था मेरा विश्वास, क्या इतना हल्का था मेरा अनुराग, एक क्षण में ही सब विस्मृत कर मुझे दिया जीवन भर का विराग। मेरे आराध्य, मेरे प्राणनाथ, आपके इस कर्म ने मुझे छलनी किया। पत्नी के निष्कलंक धर्म को संदेह की अग्नि में जला तर्पण किया। अब टूट चुका है मेरा मन, मौन हो चुकी है मेरी साधना, निष्फल हुआ मेरा समर्पण और बिखर गई मेरी आराधना। लेती हूं आज विदा आपसे, आपके स्नेह आपके साथ से, त्याग रही हूं यह नश्वर संसार और आपके अर्धांग के अधिकार से। जिस नारी ने जीवन भर पति को ही अपना ईश्वर माना, आज वही नारी लौट चली है हे धरती माता के गोद में समाना। हे माँ धरा, अब अपनी पुत्री को पुनः अपनी बाहों में भर लो। जिसका सत्य संसार ना पहचान सका, उसे अपने आंचल में धर लो। विदा प्राणनाथ, अंतिम शब्द थे ये, विदा प्राणनाथ। ईश्वर करे किसी भी युग में किसी सीता को फिर कभी अपने सत्य का प्रमाण ना देना पड़े। किसी नारी का समर्पण लोक अपवाद के आगे फिर कभी लज्जित ना होना पड़े। विदा प्राणनाथ।
1: वाह, बहुत ही उम्दा कविता आपने सुनाई डॉक्टर अंचल सिन्हा, बहुत अच्छा लगा हमें ये कविता सुनकर। निश्चित रूप से आपने नारी की व्यथा पर ये जो कविता सुनाई, हमारे श्रोता साथियों को जरूर अच्छी लगी होगी, हमें भी बहुत अच्छी लगी। तो अब आपके साहित्यिक सफर के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से आपको युवा साथी और समाज के लिखने पढ़ने समझने वाले लोग जरूर सुन रहे हैं। तो आपका साहित्यिक सफर किस तरह का रहा, सबसे पहले संतोष जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि लिखने की शुरुआत या साहित्य के प्रति रुचि आपकी कब से है और किस तरह से ये रुचि जागी, किनको देखकर आपने सीखा, कुछ अपने साहित्यिक सफर के बारे में, साहित्यिक आरंभ के बारे में हमारे श्रोता साथियों को बताएं।
0: साहित्यिक सफर

0: स्कूल जीवन से ही प्रारंभ हो गया था।
1: जी
0: मैं क्लास 9th 10th में रहा हूँ, उस समय मैंने कविता पढ़ना और कविता लिखना मैंने
1: जी
0: सीखा था, और निजी साहित्य मेरा प्रिय विषय था भी
1: जी
0: उस समय। जिन लोगों को हमने पढ़ा है, सुमित्रानंदन पंत इनकी कविता है, रामधारी सिंह दिनकर गो, राष्ट्रीय कवि हैं
1: जी
0: जिनको पढ़ करके यहाँ तक पहुँचने का अवसर मिला है, और खासकर साहित्यकार परिवार में शामिल होने का अवसर मिला, और कहीं ना कहीं प्रेरणा में रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मुझे बहुत प्रिय हैं, और उनकी 51 कविताएं पुस्तक है, उनकी कविताएं हमेशा पढ़ा करता
1: जी
0: था और बहुत प्रेरित हुआ करता था, और उनकी शैली, उनकी लिखन शैली, उनकी बोलने की शैली। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब आप स्कूल जीवन में होते हैं और जब साहित्य के प्रति थोड़ी भी रुचि रखते हैं, मुझे लगता है ऐसे बड़े बड़े साहित्यकारों के की रचनाएं जब आप पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसको रस में रसानंद करते हैं उस इन रचनाओं का, तो मुझे लगता है वो क्षण ऐसा होता है जिसको शब्दों में बयान करना कठिन है।
1: बिल्कुल
0: और मैं तो कहूँगा, अंचल जी भी मेरे मित्र हैं, कि हम लोग जब कोई रचना लिखते हैं,
1: जी
0: वो लिखने बैठते हैं, और जब रचना पूरी हो जाती है, कोई कविता पूरी हो जाती है, तो वो जो खुशी होती है,
1: बिल्कुल
0: एक रचना लिखना, मतलब किसी कवि ने कहा है कि जब कवि अपनी रचनाएं लिखता है तो एक नए जीवन को जन्म देता है, जैसे एक माँ नया जीवन देती है बच्चे को, वैसे ही है। मुझे लगता है हर कविता लेखक जो है, हर साहित्यकार, वो अपनी कविताओं से, अपनी रचनाओं से उतना ही प्रेम करता है जितना एक माँ अपने बच्चे से करती है। तो
1: बिल्कुल जी
0: कहीं ना कहीं वो जो मातृत्व का जो भाव है अपनी कविता के प्रति, अपनी रचनाओं के प्रति, वो हमेशा बना रहता है, और आगे भी जब तक जीवन है कलम
1: जी
0: चलती है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये, और हम यही चाहेंगे कि आपकी कलम हमेशा चलती रहे और आप सरगुजा में साहित्य को यूं ही प्रेरित करते रहें। अब बढ़ते हैं हम डॉक्टर अंचल सिन्हा की ओर। किस तरह से आपका साहित्यिक सफर रहा, कुछ इस बारे में श्रोता साथियों?
2: जैसा कि है, कुछ मिडिल स्कूल में मुझे कविता पाठ और मंच का हमेशा स्कूल में मिलता रहा,
1: जी
2: और रचनाओं को पढ़ने, दूसरे कवि की रचनाओं को पढ़ने के लिए, सस्वर पाठ करने के लिए मौका मिलता रहा स्कूल मंच पे, या जैसे हिंदी की कक्षाएं लगती थीं तो क्लास में भी सस्वर पाठ कराया जाता था, तो मुझे ही खड़ा किया जाता था।
1: जी
2: वहां से मेरे को एक अनुभूति होनी शुरू हुई कि जब मैं दूसरे की लिखी रचना पढ़ सकता हूं, अपनी क्यों नहीं। सौभाग्य से बालवाड़ी से ही मैं अंबिकापुर आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूं,
1: जी
2: किशोर सभा में भी मेरी रचनाएं कहानियों के रूप में ज्यादा प्रसारित हुई,
1: बिल्कुल
2: और अच्छी रचनाओं, मतलब रचनाओं से समृद्धि जो आई मेरे, जो शब्द समृद्धि मेरे में आई, वो लगातार साहित्यकारों को पढ़ते रहने के कारण, एमएससी के दौरान जब मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं,
1: बिल्कुल
2: लेकिन उस समय कुछ सर्कमटेंस ऐसे आए थे जिससे लोकल एक्सकर्सन के रूप में हम लोग को कुछ कुछ जगह ले जाया जाता था प्लांट कलेक्शन और इसके लिए, तो वहां जैसे रामगढ़ ले गए तो रामगढ़ पे एक अनुभूति आई, या देवगढ़ ले गए तो देवगढ़ पे अनुभूति आई, उसको लिख के मैंने फिर उसको पहले लिपिबद्ध करता था, फिर उसको छंदबद्ध करता था, तो वहां वो शुरुआत हुई थी। और जैसा कि अक्सर होता है युवाओं के साथ या किशोरों के साथ, कि श्रृंगार रस से ही शुरुआत होती है, तो वो संयोग श्रृंगार से ही स्टार्ट हुई थी रचना,
1: जी
2: धीरे धीरे धीरे धीरे। अब जो स्थिति है उसमें ऐसा लगता है कि जो रिटेलिंग्स हैं, जो हमारे पुराने धार्मिक साहित्य हैं, उनमें कुछ छूटा हुआ है या कुछ उसमें कुछ अनछुआ पहलू है, उनको समाज के सामने लाएं, तो उस पे अब कलम चलाने का मन करता है।
1: अच्छा लगा हमें भी आपके विचार जानकर कि किस तरह से आपका यह सफर शुरू हुआ। और देखिए, चूंकि हमारा जो ये कार्यक्रम है ये साहित्यिक पत्रिका है, तो निश्चित रूप से हम आपसे और भी कविताएं सुनना चाहेंगे। तो डॉक्टर साहब, अगर आप कोई और कविता अपनी हमारे श्रोता साथियों से साझा करें तो बहुत अच्छा।
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल
2: ये करीबन 10 साल पहले लिखी हुई एक रचना है जो मुझे बहुत प्रिय है, मैं आप सबके साथ साझा कर रहा हूं। शीर्षक है एक शाम। गुजर जाती है शाम दर शाम, गुजर जाती है शाम दर शाम, दिन गुजर जाएंगे जिंदगी के तमाम।

0: माम। खूब बटोरा धन, खूब बटोरा धन, संपदा यश नाम, सब छूट जाएगा बचेगा केवल नाम। खुशनुमा बीतते पलों में आई जुदाई, खुशनुमा बीतते पलों में आई जुदाई, रुखसत हुए जगत से आई वो शाम। एक शाम सबके जीवन में आएगी। बिखरता रहा सिक्का फूल और अनाज, प्रतीक है ध्यान देंगे। बिखरता रहा सिक्का फूल और अनाज, जनाजा में शामिल थे लोग तमाम, लूटी थी संपदा बिखरा जैसे अनाज, लूटी थी संपदा बिखरा जैसे अनाज, गुम गया था यश नाम, गूंजा सत्य राम नाम, गूंजा सत्य राम नाम। बिखरता फूल जैसे जीवन में सौंदर्य काम, सच में मेरी मुट्ठी खुली थी आज शाम। जाते हुए लोगों की मुट्ठी खुल जाती है। बिखरता फूल जैसे जीवन को जीवन का सौंदर्य काम, सच में मेरी मुट्ठी खुली थी आज शाम। गुजर जाती है शाम दर शाम, एक शाम जिंदगी हो जाती है तमाम, एक शाम जिंदगी हो जाती है तमाम।
1: बहुत ही अच्छी कविता आपने श्रोता साथियों को सुनाई, और सच में जिंदगी

0: बिखरता रहा सिक्का, फूल और अनाज, जनाजा में शामिल थे लोग तमाम, लूटी थी संपदा बिखरा जैसे अनाज, लूटी थी संपदा बिखरा जैसे अनाज, गुम गया था यश नाम, गूंजा सत्य राम नाम, गूंजा सत्य राम नाम, बिखरता फूल जैसे जीवन में सौंदर्य काम, सच में मेरी मुट्ठी खुली थी आज शाम। जाते हुए लोगों की मुट्ठी खुल जाती है। बिखरता फूल जैसे जीवन को, जीवन का सौंदर्य काम, सच में मेरी मुट्ठी खुली थी आज शाम, गुजर जाती है शाम दर शाम, एक शाम जिंदगी हो जाती है तमाम, एक शाम जिंदगी हो जाती है तमाम।
1: बहुत ही अच्छी कविता आपने श्रोता साथियों को सुनाई, और सच में जिंदगी की शाम एक ना एक दिन तो सभी की होनी है। अब चर्चा आगे बढ़ाने से पहले हम संतोष जी आपसे भी कोई कविता जरूर सुनना चाहेंगे।
2: एक घनाक्षी आप
0: बिल्कुल स्वागत।
2: ये दुनिया में आए हो तो इंसान कहलाए हो तो खुद की भी अपनी कहानी होनी चाहिए। नाम चाहे कोई भी हो, काम चाहे कोई भी हो, खून में भी सबके रवानी होनी चाहिए।
1: वाह,
2: याद रखे जग वाले काम तुम ऐसा करो, याद रखने को तो निशानी होनी चाहिए। कर्ज जमी का तुम पे भूल मत जाना कभी, नाम वतन ये जवानी होनी चाहिए।
1: बहुत बढ़िया कविता आपने श्रोता साथियों को सुनाई, हमें भी बहुत अच्छा लगा, और वास्तव में ये कविता बहुत ही ओजस्वी थी। अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम दौर में बढ़ रहे हैं, तो बस एक आखिरी छोटा सा प्रश्न आप लोगों से है, क्योंकि देखिए संतोष जी, हम आपको भी एक सार्वजनिक और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ज़्यादा बेहतर जानते हैं, साहित्यकार के रूप में बेहतर जानते हैं, तो किस तरह से आप अपने सार्वजनिक जीवन को और इस साहित्यकार के जीवन को एक साथ जी पाते हैं?
2: अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक इंटरव्यू पढ़ा था
1: जी,
2: एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने पूछा कि आप एक राजनेता भी हैं और एक अच्छे कवि भी हैं, तो आप जब दुनिया से रुखसत होंगे तो किस रूप में जाने जाना चाहेंगे, आप एक नेता के रूप में या एक कवि के रूप में
1: जी?
2: तो उन्होंने स्पष्टता से जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि लोग मुझे एक कवि के रूप में जाने
1: जी, बिल्कुल।
2: और यही जवाब यदि आप पूछेंगे तो मेरा होगा, क्योंकि जो कवि मन है वो साहित्य में ही रमता है, वो आप जरूर सामाजिक जवाबदारी रहती है और समाज में, चूंकि जीवन में परिवार भी है और सामाजिक जवाबदारियां भी हैं, तो निश्चित रूप से अपनी अपनी जवाबदारी निभाने के पश्चात जो समय बचता है उसमें हम अपनी कविताओं के बीच में होते हैं, अपनी रचनाओं के बीच में होते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा अवसर मिले, ऊपर वाला यदि ऐसा तय करे कि हमको सिर्फ और सिर्फ कविताओं के बीच में ही छोड़ दिया जाए, तो मुझे लगता है यही मांग प्रत्येक कवि की होगी। इस दुनिया में जितने साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं और कलमकार हैं, मुझे लगता है कि वो यही चाहेंगे कि मुझे पूरी दुनियादारी से ऊपर उठ करके सिर्फ एक कमरे में छोड़ दो अपनी कविताओं के साथ। तो मुझे लगता है ये साहित्य प्रेम ये है, कविताओं से प्रेम ये है, और मुझे लगता है प्रत्येक साहित्यकार के मन में, हृदय में जो होता है यही भाव।
1: जी बिल्कुल, निश्चित रूप से, और यही प्रश्न डॉक्टर अंचल हम आपसे भी पूछना चाहेंगे, क्योंकि हम आपको एक शिक्षक के रूप में जानते हैं, एक शिक्षाविद के रूप में जानते हैं, किस तरह से आप अपने कार्यों को और कविताओं को एक साथ जोड़कर रख पाते हैं?
0: अक्षय जी, मैं कहूँगा तो मैं भी संतोष जी के ही राह पे हूँ
1: जी।
0: लाख सामाजिक दायित्व हों, लाख शिक्षकीय दायित्व हों, लेकिन जब साहित्य का मौका मिलता है तो सारी चीज़ें दरकिनार हो जाती हैं, साहित्य के लिए समय निकल जाता है। और विशेषकर उन जो आक्रोश मन में है समाज को, जिसको हम बोल नहीं पाते हैं, चाहे वो सामाजिक दायरा के कारण हो या शिष्टतावश हम नहीं बोल पाते हैं, उनको शब्दों में पिरा के समाज के सामने रख पाते हैं, इसलिए साहित्य के लिए समय निकल जाता है, बाकी चीज़ें तो द्वितीय हैं।
1: निश्चित रूप से साहित्य समाज का आईना होता है, हम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, डॉक्टर अंचल बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए और एक बेहतरीन साहित्यिक चर्चा हम लोगों ने साथ में साझा की। तो साथियों, इसी के साथ साहित्यिक पत्रिका साहित्यिकी से मुझे यानी अपने साथी अक्षय को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साहित्य पत्रिका साहित्य की, जिसमें आज आपने सुना अक्षय रंजन वर्मा से साहित्यकार संतोष दास सरल और डॉक्टर अंचल कुमार सिन्हा की खास बातचीत। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। अपे से बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। स्वागत है दोस्तों आप सभी का कार्यक्रम गुंजन के आज के अंक में। आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी विक्की गुप्ता। दोस्तों, कहा जाता है कि समय कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन यादें हमेशा हमारे साथ चलती रहती हैं। जीवन के हर पड़ाव पर कुछ ऐसे पल बनते हैं जो वर्षों बाद भी उसी ताजगी के साथ हमारे मन में बसे रहते हैं। कभी बचपन की शरारतें, कभी स्कूल के दिन, कभी परिवार के साथ बिताए पल, तो कभी अपने की मुस्कान। यह छोटी छोटी बातें जीवन को खूबसूरत बनाती हैं। आज को इस कार्यक्रम में हम गीतों की मधुर धुनों के साथ उन्हीं अनमोल यादों को फिर से जीने का प्रयास करेंगे। तो आइए, मुस्कुराइए, कुछ पल अपने लिए निकालिए और चल पड़िए हमारे साथ यादों का कारवां विषय पर। साथियों, इसी के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुंजन का पहला गीत फिल्म स्वामी से, जिसमें अमित खन्ना की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने और आवाज़ दी है किशोर कुमार ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: साथियों, आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी विक्की गुप्ता, और आज हम बातें कर रहे हैं यादों का कारवां विषय पर। दोस्तों, जिंदगी का किताब का हर पन्ना कुछ ना कुछ सिखाता है, लेकिन कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार पढ़ना चाहते हैं। वे पन्ने होते हैं हमारी यादों के, कभी गर्मियों की छुट्टियों में ननिहाल जाना, आम के बगीचों में खेलना, बारिश की पहली फुहार में भीगना, या सर्दियों की धूप में परिवार के साथ बैठकर बातें करना। ऐसे अनगिनत पल हैं जो समय के साथ बीत तो जाते हैं, लेकिन मन को किसी कोने में हमेशा जिंदा रखते हैं। गांव के श्रोताओं को खेतों की मेड़ों पर बीता बचपन याद आता होगा, तो शहर में रहने वाले साथियों को अपनी पुरानी गलियां और स्कूल के दोस्त। सच तो यह है कि यादों का कोई पता नहीं होता, वे किसी गीत की धुन से भी लौट आती हैं और किसी खुशबू से भी। यही तो यादों की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आइए अब इसी एहसास को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे गीत के साथ चलते हैं जो बरसों से लोगों के दिलों में बसा हुआ है। तो आइए सुनते हैं फिल्म कल हो ना हो का ये प्यारा सा गीत। आवाज़ सोनू निगम की, संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय, और सब दृश्य है जावेद अख्तर की।

एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है दोस्तों आप सभी का कार्यक्रम गुंजन के आज के अंक में। आज हम बातें कर रहे हैं यादों का कारवां विषय पर। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में हमें एक दिन के लिए फिर से बचपन लौटा दे तो शायद हम सब बिना कुछ सोचे सबसे पहले अपने पुराने दोस्तों से मिलने निकल पड़े। बचपन वो समय था जब छोटी छोटी टॉफी भी बड़ी खुशी दे जाती थी, मिट्टी में खेलना भी किसी त्यौहार से कम नहीं लगता था और शाम होते ही घर लौटने

की आवाज़ हर बच्चे के लिए एक जैसी होती थी। गांव में गिल्ली डंडा, कबड्डी और खेतों के किनारे दौड़ना तो शहरों में साइकिल चलाना, पतंग उड़ाना और मोहल्ले के दोस्तों के साथ खेलना। समय भले बदल गया, लेकिन उन दिनों की मासूमियत आज भी दिल में वैसे ही बसी हुई है। शायद यही कारण है कि जब भी बचपन की कोई बात छिड़ती है तो चेहरे पर अनायास मुस्कान आ जाती है। तो आइए बचपन की उन्हीं सुनहरी यादों को सलाम करते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, जिसे फिल्म तारे ज़मीन पर से लिया गया है। आवाज़ है शान और आमिर खान के, धुन दिया है शंकर एहसान लॉय ने, शब्द रचना है प्रसून जोशी की।

दोस्तों, जीवन की सबसे सुंदर यादें अक्सर रिश्तों से जुड़ी होती हैं। माँ की ममता, पिता का स्नेह, भाई बहनों की नोकझोंक, दादा दादी की कहानियाँ और दोस्तों की बेफिक्र हंसी, यही तो हमारी असली पूंजी है। समय की रफ्तार में कई बार हम अपनों से दूर हो जाते हैं, लेकिन दूरी कभी रिश्तों की मिठास कम नहीं कर पाती। कभी कोई पुरानी तस्वीर, कोई त्यौहार या कोई गीत हमें बरसों पीछे ले जाता है। ऐसा लगता है जैसे बीते हुए पल फिर से हमारे सामने खड़े हो गए हों। इसलिए रिश्तों को समय दीजिए, क्योंकि यही पल आगे चलकर सबसे खूबसूरत यादें बनते हैं। तो आइए अब सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जिसे फिल्म हम साथ साथ हैं से लिया गया है। गीत के गीतकार हैं रविंद्र रावल, संगीत निर्देशन है राम लक्ष्मण का और आवाज है हरिहरन, घनश्याम रघुवंशी, प्रतिमा राव और सैंटो के।

0: चौपाल में नवा कार्यक्रम शुरू हुई सवे रविवार संझा के ठीक 7:30 बजे से।
1: हौ फरमाइशी कार्यक्रम हवे, संगी अपन फरमाइश भेजी और हमन गीत बजाबो।
0: कौन सा गीत?
2: सुघर गीत जैसे

0: बस हमर कार्यक्रम में मेल करी किसानवाणी अंबिकापुर 2026@gmail.com। जुलाई के पहला रविवार से कार्यक्रम शुरू होही।
1: चौपाल फरमाइश।
2: साथियों, कार्यक्रम गुंजन के आज के सफर में हम बात कर रहे हैं यादों का कारवां विषय पर। तो साथियों, चाहे हम गांव में रहते हों या शहर में, हर जगह की अपनी अलग पहचान और अपनी अलग यादें होती हैं। गांव की सुबह, पक्षियों की चहचहाहट, खेतों की हरियाली और चौपाल की बातें, वहीं शहर की चहल पहल, रोशनी, बाजार और तेज रफ्तार जिंदगी भी अपने अनुभव देती है। समय के साथ लोग जगह बदल लेते हैं, लेकिन जन्मभूमि और बचपन की गलियां हमेशा दिल में बसी रहती हैं। जब भी उन रास्तों पर दोबारा कदम पड़ते हैं, मन बरबस भाव को उठता है। आइए अपने गांव, अपने शहर और अपनी मिट्टी की खुशबू को महसूस करते हुए सुनते हैं यह मधुर गीत, जिसे फिल्म स्वदेश से लिया गया है। आवाज़ है एआर रहमान की, संगीत निर्देशन है एआर रहमान का, शब्द रचना है जावेद अख्तर की।

0: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
0: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।

साथियों, आज हम बातें कर रहे हैं यादों का कारवां विषय पर, और मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी विक्की गुप्ता। तो दोस्तों, त्यौहार केवल कैलेंडर की तारीखें नहीं होती, बल्कि परिवार, अपनापन और खुशियों का उत्सव होते हैं। दीपावली की रोशनी, होली के रंग, रक्षाबंधन की मिठास, तीज त्यौहार की रौनक और मेलों की चहल पहल, इन सब की यादें जीवन भर हमारे साथ रहती हैं। गांव में पूरे मोहल्ले का एक परिवार बन जाना और शहरों में दोस्ती के साथ त्यौहार मनाना, दोनों ही अपने अपने अंदाज में खास हैं। आज भी जब कोई त्यौहार आता है तो बचपन के वे दिन आंखों के सामने घूम जाते हैं। तो आइए, इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म कभी खुशी कभी गम से। आवाज़ है अलका याग्निक, अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: साथियों, यादों के सफर में कई ऐसे गीत भी हैं जो हमें काफी कुछ याद दिला देते हैं। जैसे कोई पुराना गीत सुनते ही मन बरसों पीछे चला जाता है। कुछ गीत हमें स्कूल के दिनों की याद दिलाते हैं, कुछ पहली नौकरी की, कुछ परिवार के साथ बिताए सुनहरे पलों की। संगीत की यही सबसे बड़ी ताकत है कि वह समय और दूरी की सीमाएं मिटाकर हमें हमारी यादों से जोड़ देता है। शायद इसी पुराने गीत आज भी उतने ही पसंद किए जाते हैं, क्योंकि उनमें सिर्फ सुर नहीं बल्कि अनगिनत भावनाएं और यादें भी छिपी होती हैं। तो इसी के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत, जिसे फिल्म रॉक स्टार से लिया गया है, जिसमें इरशाद कामिल की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है AR रहमान ने और आवाज़ दी है मोहित चौहान ने।

साथियों, आज के सफ़र में हमने महसूस किया कि यादें कभी पुरानी नहीं होती। वे समय के साथ हमारे जीवन में नई ऊर्जा, नई मुस्कान और नई उम्मीद लेकर आती हैं। इसलिए अपने अपनों के साथ बिताइए, छोटी छोटी खुशियों को संजोइए और हर दिन कुछ ऐसे पल बनाइए जिन्हें आने वाले वर्षों में याद करके आपका मन मुस्कुरा उठे। उम्मीद है यादों का कारवां का यह सफ़र आपको भी अपने जीवन में के किसी खूबसूरत मोड़ तक ले गया होगा। अब विदा लेने का समय है, लेकिन यादों का यह कारवां यूं ही चलता रहेगा। इसी विश्वास के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म शोर से आवाज़ है मुकेश और लता मंगेशकर की, संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, सद्र रचना है संतोष आनंद की।

0: साथियों, इस प्यारे से गीत के साथ ही बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ मुझे यानी अपने दोस्त विक्की को दीजिए इजाजत आज के कार्यक्रम गुंजन से। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9:55 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य।

और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक के प्रारूप को दी मंजूरी। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा और महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की पात्र हितग्राही महिलाओं के ई केवाईसी पंजीयन की तिथि 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। अब समाचार विस्तार से। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक को लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में व्यापार और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी, डिजिटल तथा समयबद्ध बनाना है। वहीं बस्तर फाइटर्स में फाइटर आरक्षक भर्ती और सेवा नियम में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना और संचालन संशोधन विधेयक के प्रारूप का भी अनुमोदन किया है।

0: विधेयक का उद्देश्य राज्य में व्यापार और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी, डिजिटल तथा समयबद्ध बनाना है। वहीं बस्तर फाइटर्स में फाइटर आरक्षक भर्ती और सेवा नियम में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। मंत्री परिषद ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना और संचालन संशोधन विधेयक के प्रारूप का भी अनुमोदन किया है। इससे राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाने का फैसला किया है। सभी जिलों के आरटीओ तथा डीटीओ को अपने क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशनों के लिए जगह चिन्हित करने और एनओसी की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ऐप हैं, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। सरकार अब राज्य स्तर पर एकीकृत प्लेटफॉर्म ऐप बनाएगी। वहीं भारत सरकार भी यूनिवर्सल ईवी चार्जिंग ऐप ला रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल राज्य के शासकीय सेवकों के लिए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य शासकीय सेवकों को आकस्मिक परिस्थितियों में सम्मानजनक, त्वरित और सहज वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कर्मचारियों को आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए निजी साहूकारों अथवा ऊंचे ब्याज दरों पर ऋण लेने की व्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने ऐसी व्यवस्था विकसित की है, जिसके माध्यम से वे बिना अनावश्यक कागजी प्रक्रिया के अपनी पात्रता के अनुसार अल्पावधि ऋण प्राप्त कर सकेंगे। महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की पात्र हितग्राही महिलाओं के ई केवाईसी के पंजीयन की तिथि 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। महिला और बाल विकास विभाग ने छूटी हुई हितग्राही महिलाओं से निर्धारित समय में ई केवाईसी कराने की अपील की है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक पुलिस थाना रैंकिंग में बस्तर स्थित बोधघाट थाना को राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष देशभर के पुलिस थानों का मूल्यांकन विभिन्न मानकों पर किया जाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर के डूमरतराई में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधिसंखना विकास मंडल द्वारा विकसित नवीन थोक बाजार फेज 2 का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि परिसर का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर किया जाएगा तथा उनकी प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही ईज ऑफ लिविंग को भी समान महत्व दे रही है। राजनांदगांव के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र व्यास का कल 8 जुलाई को निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। श्री व्यास प्रेस क्लब राजनांदगांव के संरक्षक थे। इसके अलावा श्री व्यास ने लंबे समय तक राजनांदगांव जिले के आकाशवाणी संवाददाता के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के लिए अग्रिम शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.nic.in से अपनी पर्ची डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक के प्रारूप को दी मंजूरी। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा और महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की पात्र हितग्राही महिलाओं के ई केवाईसी पंजीयन की तिथि 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। श्रोताओं, आइए जानते हैं तापमान संबंधी सूचना। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान हमारे शहर अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तथा वर्षा 0.3 मिलीमीटर मापी गई। तापमान संबंधी सूचना के बाद आइए एक नज़र डालें आज के मुख्य आकर्षणों पर। श्रोताओं, के पसंद पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद कानंदा।

ले सकेंगे। दिन के 11:05 पर साथ ही एनसीईआरटी और सीआईईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय होगा दोपहर के ठीक 12 बजे और शीर्षक पर आधारित कार्यक्रम चयन अब सुन सकेंगे दोपहर 12:30 पर। कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण होगा दोपहर 1:05 पर। साथ ही महिलाओं के लिए कार्यक्रम घर आंगन आप सुन सकेंगे दोपहर 1:10 पर और युवा श्रोता कार्यक्रम युवावाणी सुन सकेंगे शाम 5:30 पर। साथ ही ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल आज सजेगा तय समय शाम 7:20 पर। श्रोताओं की ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज का आनंद आप ले सकेंगे दोपहर 1:40 और रात्रि 9:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम दीदी की गोठ आप सुन सकेंगे दोपहर के ठीक 2 बजे। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। साथ ही गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा आप सुन सकेंगे दोपहर 2:45 पर। गैर फिल्मी और फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:05 पर और कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण होगा शाम 6:05 पर। सरगुजिया लोकगीतों का कार्यक्रम गोधुली आप सुन सकेंगे शाम 6:20 पर और फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी का आनंद आप ले सकेंगे शाम 6:30 पर और कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन सकेंगे रात्रि 9:15 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा का आनंद आप ले सकेंगे शाम 7:05 पर। साथ ही सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश आप सुन सकेंगे रात्रि के ठीक 8 बजे। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी आप सुन सकेंगे रात्रि के ठीक 10 बजे, जिसमें आज आप सुनेंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के बांसुरी वादन में राग बागेश्री। साथ ही श्रोताओं के फरमाइशों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन आप सुन सकेंगे रात्रि 10:30 पर। श्रोताओं, ये थे हमारे आज के मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10:03 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम गांव कर गीत।

0: गांवकर गीत।
1: राउर मनकर मन लगा कार्यक्रम गांवकर गीत में एक दफे फिर हाजिर हूँ मैं, राउर मनकर भाई, राउर मनकर दोस्त धर्मू भैया। राम राम, जय जोहार। बहुत जोहे के बाद देखब कि दो तीन रोज ले पानी अच्छा गिरत हवे। जीवर फिकरात रहिस बकी अब बरखा सबे कति गिरत हवे। हमर गांव कर गीत सुनोया फरमाइश करता, जम्मो गांव घर कर लोग काम बूता में लाग गई हैं, बकी फोन करना नहीं भूलें। देखिए एक ठन फोन आत हवे, आज कर गांव कर गीत कार्यक्रम कर ये पहल फोन काकर हवे।
2: हेलो,
1: गांव कर गीत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत कर।
2: नमस्कार गया।
1: नमस्कार, जय जोहार।
2: योगेश जांगड़े बोला था, सिरवा बांध अभी मैं करा ले।
1: हाँ योगेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है राउर कर।
2: जी धन्यवाद भैया।
1: सब बने बने ना?
2: हाँ सब बने बने भैया, अबर पानी गिरे है यहाँ।
1: अच्छा।
2: हाँ
1: हमारे यहाँ तो का है दो तीन रोज हो से गिरत ले, उकर पहले तो गिरते नहीं रहे।
2: यहाँ चार पाँच दिन हो गए भैया।
1: अच्छा।
2: हाँ
1: पहल फोन लगी से राउर कर, कौन सा गीत सुनना चाह?
2: लक्ष्मण मस्तूरिया जी का आवाज में कोई भी बढ़िया गीत सुनवा दे।
1: लेकिन सुनी राउर कर पसंद कर ये बहुत सुघर अकन गीत।

0: हेलो गांवकर गीत।
1: गांवकर गीत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है राउरकर, परिचय बताइए।
0: हाँ भैया, मैं सत्यम क्लब फुलकोना से अरविंद कुमार यादव बोला तो भैया। जय राम।
1: जय राम, जय जोहार।
0: और अंबिकापुर के क्या हाल चाल है? पानी नहीं आया अभी हाल में?
1: हाँ, अभी तो 2-3 रोज हुई से पानी, नहीं तो इसने तो रही जोहत रहन, अब पानी गिरना शुरू हुई से।
0: हाँ, नहीं तो हमरो का कल रात भर, कल शाम के 5 बजे से लेकर रात भर पानी, आज तो ये सुबह कर घिस भैया पानी आते आते पूरा खेत खलिहान तो मत भर घिस भैया।
1: तो सब तो काम बूता में लायक गिन हुई है जी, है ना?
0: हाँ, अब तो अब खेती बाड़ी के भी दिन है, भी थरा वरा बारी भी होगी इसी कट के जा।
1: हाँ,
0: वो कुछ का रूपा भी जैसे सुविधा अनुसार है तो मन भी मत कर चुकी है।
1: बढ़िया बात है भाई।
0: ओ, तो आज राहुल के पसंद भैया की भोजपुरी गीत बजा दिए भैया।
1: अच्छा, तो
0: हाँ हाँ, का समय तेरा भैया कर लिए भैया, धन्यवाद भैया जी भैया।
1: हाँ, राहुल के भी धन्यवाद। तो लेगी सुनी राहुल पर हमर पसंद करिए सुघर अकन भोजपुरी गीत।

0: हेलो,
1: गांव कर गीत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है राउरकर।
0: राम राम भैया, धन्यवाद।
1: राम राम, जय जोहार।
0: हाँ भैया, मैं चंद्रभान रजवाड़े बात करता हूँ भैया, गांव अनुजनगर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ ले।
1: चंद्रभान भाई, बहुत बहुत स्वागत है राउरकर।
0: धन्यवाद भैया, धन्यवाद।
1: और बताइए, सब हाल चाल बढ़िया ना?
0: हाँ भैया, हाल चाल बहुत बढ़िया है भैया। धान पान की रोपाई के काम चालू कर दे हैं भैया, तो वही में लगे हैं। और पानी बरखा तो कल बहुत बढ़िया गिरे है भैया, तो यह तो तेज होगी से।
1: हाँ, कति गिरीस भाई पानी?
0: हाँ हाँ भैया, कल बहुत जोरदार पानी गिरी से, कही तो पहला मोटा पानी गिरे है।
1: हाँ, ये बढ़िया बात है कि हमारे जो है ना फरमाइश करता हुआ गांव कर गीत कर जो है अपन गीत सुनो या फरमाइश करता हमारा जरूर से जरूर इतना अपन व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद फोन करते हैं, बहुत बढ़िया लगे।
0: हाँ भैया, यदि आप मन के कार्यक्रम है इतना जोरदार रखते कि भैया हम एकदम समय निकाल के आप मन बात करे प्रयास करते रहता और फलसा मिल जाते तो बहुत बढ़िया लगते है हमारा भी।
1: कौन सा गीत सुनना चाहते हो चंद्रभान जी?
0: गुलाब राम पैकरा का गाल है भैया, उठोगा संगी मोर भुइयां के।
1: गुलाब सिंह पैकरा का गाल।
0: हाँ हाँ, देखिए खेती बाड़ी के काम चलते है।

0: जुड़ल गीत है तो बहुत बढ़िया।
1: अच्छा
0: अच्छा लागे हम जमा संग संगवारी मंडा सुनैया
1: मंडा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो लेकिन सुनी राउर बार ये बहुत ही सुघर अकन गीत।
2: उठाओ गसंगी मोरी भुइया की, अरे उठाओ गसंगी मोरी भुइया के, मायारू किसान

0: हेलो
1: गांव कर गीत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है राउरकर, परिचय बताई।
0: यश के धर्मेंद्र जी, राम राम।
1: राम राम, जय जोहार।
0: मैं सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम सर राजवाड़े बात करता हूँ।
1: प्रेम सर भाई, मैं तो राउरकर जान के रहना आवाज ला, बाकी हमारे जो सुनने वाला श्रोता है ना, उनके भी तो पता चलना चाहिए कौन है वे फरमाइश करता।
0: हाँ
1: सब बने बने।

0: गांव घर कती?
1: हाँ सब बढ़िया है, बात तो ही पानी बरखा के इंतजार है थोड़ा सा, बाकी कहीं कहीं जगह भारी बारिश आई से इसे समाचार में सुने लगे।
0: हाँ हाँ कल हमरो कती गिरी से, वजह हमर जो फोन करविया है उमन भी बोलत है अगल बगल जो है ना अच्छा गिरी से पानी।
1: एक ही हमारे यहाँ पानी बहुत कम के बराबर की।
0: हाँ सब है कि पूरा ही पानी ला सब कती, यहाँ बादल तो छाई से।
1: और मैं यही कहूँ कि भाई बरखा गिर गई से तो आजकल कहीं कहीं गांव में जमीने में सो जाते हैं, है ना, तो अपन चरपाई खटिया में सोना चाहिए उपना, ताकि
0: मौसम में
1: कहा है कि भ्रमण कर देते हैं एकर से डर भय रहे, है ना।
0: बिल्कुल ठीक।
1: और समाचार में कहा कि सुने लगा कहीं कहीं मिलते कि भाई सांप काट दहीस तो बिच्छू काट दहीस, है ना।
0: हाँ हाँ हर साल कर बात है, तो
1: इस तरह से मतलब सावधानी जरूरी है ना।
0: बिल्कुल भाई देखिए कि
1: तो पानी भाई आजकल साग सब्जी भी जैसे बरसात का मौसम आगे से तो साग सब्जी वाला भी बढ़िया से पानी वगैरह में धो के नमकीन पानी में थोड़ा सा धो धा के भिगा के ही इस्तेमाल करना चाहिए, है ना।
0: ठीक है।
1: और अभी गुनगुना पानी पीना चाहिए खास करके।
0: बढ़िया संदेश है राउरकर।
1: और यही कहूँ कि भाई कहीं आना जाना करें तो अपन साथ बरसाती वगैरह छती छता ये सब ला रख ले रहे हैं कि पानी है कभी भी कैसे टाइम आ सके ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: पंडवानी गायिका तीजन सिंह इस दुनिया से चले गए तो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बहुत श्रद्धांजलि है ना।
0: हमारे यहाँ कर कहब की गौरव रहीन वो उनकर हमन अपन कार्यक्रम के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित कर थी। तो कौन सा गीत सुनब प्रेम साहब भाई?
1: तो गीत ध्रुवा राम मरकाम और उनकर संगता के आवाज में अच्छा सा झिमिर झिमिर पानी बरसे वाला गीत दिया।
0: अच्छा बहुत बढ़िया पसंद है राउरकर, तो लेकिन सुनिए राउरकर पसंद करिए सुगर अगन गीत।

0: मोर पर गंगा मोर पर काशी मोर पर चारो धाम किसानी
1: मोर पर चारो धाम किसानी मोर पर चारो धाम किसानी
0: मोर पर गंगा मोर पर काशी मोर पर चारो धाम किसानी
1: मोर पर चारो धाम किसानी मोर पर चारो धाम किसानी
0: जियत किसानी मरत किसानी नहीं जानो।

0: मियाँ माँ चित कहे हमर कुरिया,
1: चित कहे हमर कुरिया, चित कहे हमर कुरिया।
0: छत्तीसगढ़ के भूया माँ चित कहे हमर कुरिया,
1: चित कहे हमर कुरिया, चित कहे हमर कुरिया।
0: गाँव के ताई दीदी बहनी बड़े अब्बड़ है मोर प्रिया,
1: अब्बड़ है मोर प्रिया, अब्बड़ है मोर प्रिया।
0: गाँव के ताई दीदी बहनी।

0: हेलो गांवकर गीत।
1: गांवकर गीत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है राहुल कर, परिचय बताइए।
0: मैं अंबिकापुर राजकुमार नेगवानी बोला चल भैया।
1: राजकुमार नेगवानी जी बहुत बहुत स्वागत है।
0: मैं ये कहते हैं दादा कि अभी थोड़ा और पानी वानी गिरी तो किसान मन की थोड़ा चिंता दूर होगी, सब खेती बाड़ी में लग गए किसान मन दादा।
1: हाँ
0: और पानी भी ठीक है गिरी इसका भैया
1: सब कहते गिरी से एक आध जगह छोड़ के। अभी मैं हमारे श्रोता मन से गुठियात हूँ तो मुझे पता चला था कहाँ कहाँ गिरी से।
0: हाँ कर कर पानी तो जम्मो जगह है दादा, सब जगह पानी वाला।
1: हाँ लगभग लगभग सब जगह है, एक अति कटिक सुनगरा कति नहीं रही।
0: अच्छा सुनगर तो एक लसन उसरी अकर गाना इस दादा सुने के कोई गाना तुम्हारे पसंद के।
1: अच्छा तो लक्ष्मण मस्तुरिया जी कर गाल गीत रोरे सुनना चाहते हैं।
0: एक दूसरे साथी मन याद कर मोर साथी प्रेम सर राजवाड़े और प्रेम सर कुलेश्वर राजवाड़े।
1: चलिए ठीक है तो लेके सुनी राउर बर और राउर मनकर दोस्त बर ये सुघर अकन गीत।
0: ये जो सुझाव दे रहे दादा।
1: हाँ
0: तो किसान वाणी के अंतर्गत जो सजीव कार्यक्रम है लोकर जानकारी बीच में दे दे देती है तो ठीक रहता दादा।
1: लाइव प्रोग्राम जो है ना वो हमार
0: जानकारी हर करके मैं दे रहती ताकि किसान मन अपने हिसाब से तैयारी करे कौन सा विशेषज्ञ आते आज है ना दादा।
1: ठीक कार्यक्रम के एक या दो दिन पहले विशेषज्ञ महोदय।
0: अच्छा, कल नहीं बताते, कल नहीं बताते।
1: लेकिन हमर जो सजीव कार्यक्रम है ना वो तो हमर हर मंगल रोज होबे करे।
0: ठीक है दादा।
1: 7:30 बजे से 8 बजे कर बीच में।
0: हाँ हाँ सुनता हूँ दादा, बराबर नया कार्यक्रम भी चालू है चौपाल पर मैं ओला भी सुनता हूँ भैया मैं।
1: धन्यवाद राउर के, राउर तो हमर नियमित श्रोता ही और सुनी अपन
0: नियमित लगातार जुड़े तक मौका से निम्न जाता है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल राउर मन जैसे श्रोता के कारण ही जो है ना हमर प्रोग्राम जो है और जो है दिन दुनी रात चौगने तरक्की करता आता है।
0: अरे आकाशवाणी के छत्तीसगढ़ के नंबर वन चैनल है दादा।
1: धन्यवाद राउर के, लेकिन सुनी अपन पसंद करे सुघर अकन गीत।

0: हेलो,
1: गांव का गीत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। परिचय बताइए
0: जी। राम राम भैया।
1: राम राम, जय जोहार।
0: जोहार भैया, पूरन सिंह बजारा बात करत रहन भैया।
1: हाँ पूरन जी, स्वागत है राउर कर
0: जी। भैया धन्यवाद भैया। यहाँ विकास खंड प्रेमनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ ले बोला था भैया।
1: हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, राउर तो हमारे नियमित श्रोता ही।
0: हाँ भैया, हाँ बहुत दिन में लगाया हूँ भैया। अभी वही रोपाई उपाई लगे चालू करे हैं भैया का हाथ हूँ।
1: हाँ हाँ, सुगर बात हमें भाई, खेती पाती चारों कती चलता है।
0: हाँ हाँ हाँ, तो कहा है पहले पानी के साधन रहे भैया, तो सारा वारा जल्दी करे रहे भैया, तो अभी पानी लगातार कहो तो एक सप्ताह होगी लगातार बरसत है। आज भी बरसत रही, रात भर बरसी थे पानी है।
1: अच्छा
0: हाँ, तो अभी वही भुचार उचार लगाया हूँ भैया, 15-20 घन और 2-10 फिर डोली ले चिखलवाए हैं।
1: हाँ,
0: और आजकल तो भैया आधुनिक साधन होगी से भैया, तो ट्रैक्टर से जोतवाल जाते, बाकी फिर बाद में फिर कोपरे घड़ी बैला मन से उपयोग करते हैं भैया।
1: हाँ हाँ हाँ, कौन सा गीत सुनना चाहब तो पूरन सिंह बंजारा जी?
0: जी भैया, तो अभी तो अब क्या कहना चाहिए, असार सावन खेती बाड़ी के दिन है भैया, तो कोई खेती बाड़ी के संबंधित कोई अच्छा सा गाना बजा देते भैया तो अच्छा रहे।
1: बिल्कुल राउर बार सुनवात हूँ मैं खेती
0: बाड़ी। मैं कुछ लास्ट में कुछ बोलना चाहूँ भैया, दो शब्द।
1: हाँ,
0: तो भैया देखे कि अभी बरसात के मौसम है भैया, तो मैं यही से अपील कर रहा था भैया, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा था, बस ये है कि अभी हर कोई ला दो या चार पौधा लगाना चाहिए भैया। कहा है हमें कि हमारे पेड़ रन भी बने रहते भैया, और कहा है पेड़ है तो हम है ना कुछ नहीं है भैया। मैं हर साल के 3 साल भी मैं 5-5 पौधा लेके आया हूँ भैया, और मैं जगह भी ले जा रहे हूँ अपन खेत के मेड में, मतलब बाड़ी में लगाया हूँ, और बाकी में जुम्मन जितना भी खेत है भैया, खेत के सब मेड मन में हर कई प्रकार के पौधा लगाया हूँ।
1: बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया।
0: तो मैं चाहता हूँ भैया हमारे रेडियो सुनता साथी वाला भाई बहन वाला की यही मन में बरसात के मौसम में पौधा लगाए भैया।
1: बढ़िया संदेश है राउर कर जो है पूरन जी, और बढ़िया राउरे काम भी करत थी। लेगी सुनी राउर पर ये सुगर अखन गीत।
2: गोंदा चंदईनी फूलिया सन

है। हेलो, गांव कर गीत कार्यक्रम। इंद्रभान सिंह बोला थी। अच्छा, तो तमुरा गीत सुनना चाहती। इंद्रभान जी, जब हमारा रिकॉर्डिंग हुए तो हमेशा रौरे बस में रहती, यही बार राउर कर आवाज जो है ठीक से सुनाई नहीं देता है, बाकी राउर बार जरूर मैं सुनवाऊँ गीत। तो लेकिन सुनी राउर कर, पसंद कर ये तमुरा मधेकर गीत।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: गांव का गीत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। परिचय बताइए।
1: राम राम दादा, जय राम।
0: राम राम, जय जोहार।
1: मैं ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से खेल साहब मरकाम बोलत हूँ।
0: खेल साहब जी, स्वागत है राउर कर।
1: धन्यवाद भैया।
0: सब बने बने हैं ना?
1: हाँ, बने बने हैं सब।
0: तो आज कौन सा गीत सुनना चाहब?
1: ध्रुवा राम मरकाम का कोनो भी गीत सुना दी है भैया।
0: बिल्कुल सुनवाब राउर के, लेकिन सुनी ध्रुवा राम मरकाम जी कर गाल ए सुगर अकन गीत।

0: तो ये रही श्रौर मनकर मन लगा कार्यक्रम गांव कर गीत कर आखिरी गीत। जो नवा श्रोता हमारे से जुटना चाहते हैं और फोन करके अपन मन लगा गीत ला सुनना चाहते हैं, उनकर पर मैं अपन फोन नंबर ला बता दूं। हमारे फोन नंबर हवे 2319172319918। अब अंबिकापुर के बाहर कर रहो या मोबाइल फोन से फरमाइश करना चाहते हैं ओमन, ये नंबर के पहले STD कोड लगाही 077774। कार्यक्रम गांव कर गीत के अगले अंक में अगले हफ्ता राउर मन से फिर भेंट होही। धर्मू भैया कर राम राम जय जोहार। ये कार्यक्रम कर प्रस्तुत करता रहीन परमेंद्र कुमार और प्रस्तुति सहायक रहीन S. धर्मेंद्र।
1: गांव कर गीत
2: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम गांव कर गीत। प्रस्तुतकर्ता थे परमेंद्र कुमार और प्रस्तुति सहायक थी S. धर्मेंद्र की। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज आज तीसरे वार्षिक नेता शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। विक्टोरिया स्थित गवर्नमेंट हाउस में आयोजित इस सम्मेलन में दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नए बाजार का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की समानताएं निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।

0: कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है और आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
1: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने आज मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया स्थिरता के स्वाभाविक और विश्वसनीय स्तंभों के रूप में एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच संपन्न हुए व्यापार समझौते से आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया। श्री अल्बनीज ने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर मजबूती से अग्रसर है। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि निवेश भारत के विकास पथ पर दुनिया भर के विश्वास को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बुधवार को कठुआ जिले में एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया और वहां से दो हथगोले बरामद किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के बिलावर क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में स्थित इस ठिकाने का पता ओवरग्राउंड वर्कर हाजी लतीफ के से चला। रबागढ़ निवासी लतीफ को 2 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। उस पर पिछले कई वर्षों से सीमा पार से एक दर्जन से अधिक आतंकवादियों की घुसपैठ में मदद करने का आरोप है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसके 7% के वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि दिल्ली की सभी मुख्य सड़कों पर जलभराव की स्थिति नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी संबंधित एजेंसियां अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 10 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। पहले गीत की फरमाइश मिली है अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिश श्रीवास्तव। ये शिवाजी चौक राजिम से मिली है। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, राजेश कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लव्य श्रीवास्तव। बेड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गबनेकर, धीरज सवासेरे। डाबर तालाब लोनी से आरिश हुसैन, रजा अहमद, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा। आप सभी श्रोताओं के पसंद पर लीजिए सुनिए फिल्म वो कौन थी का गीत। गीतकार हैं राजा मेहदी अली खान, संगीतकार हैं मदन मोहन और

अगली फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की है, धरसिंहा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा यादव, अनुराग यादव ने, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव यादव, रानू, खुशी, प्रवीण साहू, सी एल यादव ने, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, महादेव अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर ने। लीजिए सुनिए फिल्म आराधना का यह प्यारा संगीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं आर डी बर्मन और आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म आराधना का गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। अगला पत्र हमें लिख भेजा है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जयमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक, समस्त डागला परिवार ने, मेहरनगर अमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत।

0: गवहानकर राही श्रीमती सरिता गवहानकर प्रिंस एकांत गवहानकर ने, बहादुर नगर नागपुर से श्रीमती वैशाली शैलेश गवहानकर, श्वेता सुमित गवहानकर, कुमारी ध्वनि गवहानकर ने, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू रविंद्र सेन। आइए सुनवाते हैं आप सभी के फरमाइश पर फिल्म यादों की बारात का गीत। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं आरडी बर्मन, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की।
1: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
2: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
1: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
2: क्या 230-600?
1: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
2: पक्का?
1: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
3: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।

अगली फरमाइश प्राप्त हुआ है इन श्रोताओं का। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिक्का, बलिंदर बिरक, जैतेक बिरक, मिक्का बिरक, गौतम नगर जिला नादेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश, गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे। लीजिए सुनिए फिल्म एजेंट विनोद का गीत। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार हैं प्रीतम, आवाज़ है अरिजीत सिंह का।

0: अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह के आवाज में फिल्म एजेंट विनोद का गाना।
1: में नवा कार्यक्रम शुरू हुई सवे रविवार संझा के ठीक 7:30 बजे से
2: हाँ फरमाइशी कार्यक्रम हवे संगी अपन फरमाइश भेजी और हमन गीत बजाबो।
1: कौन सा गीत?
3: सुघर गीत जैसे ए
4: तोरे खोपा मा चंदनी गोंदा।

0: बस हमर कार्यक्रम में मेल करी किसान वाणी अंबिकापुर 2026@gmail.com। जुलाई के पहला रविवार से कार्यक्रम शुरू हो ही।
1: चौपाल फरमाइश।
2: अगला फरमाइश लिख भेजा है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार नशीमा बेगम आयशा खान हदिया खान आसमा सालिया शोएब खान पोतरा मुजताबा खान राउफ भाई राशिद भाई श्री श्रृंगी ऋषि महानदी हिसावा से मिथिलेश देवांगन मधु देवांगन हिमांशु अंकित देवांगन गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले रेखा कामले राखी पारस तपस्या करिश्मा कामले स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी रामनगर रोड शांति नगर इंदौर से खुशी खर्चे ब्रोनो खर्चे कार्तिक खर्चे संजना खर्चे परी खर्चे ललिता नारायण खर्चे। लीजिए सुनिए फिल्म झूम बराबर का गीत। गीतकार हैं गुलजार संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय आवाज़ है राहत फतेह अली खान की।

इस गीत के बाद अगला पत्र प्राप्त हुआ है भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, भाव मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाव मराठा, परी संजना मराठा, ललिता नारायण खर्चे, कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से महिमा श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, सोनू, वंदना और श्रीवास्तव के सभी परिवार, एडोमा थाना लक्ष्मीबाई अनाज मंडी वंदनगर इंदौर से राम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, मालती प्रयाग चौधरी, कुमारी देव की चौधरी ने, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी काव्या, भाई सच्चा पाठक, छत्तीसगढ़ पथरिया परेवा से छन्नूलाल यादव, माफ़ कीजिएगा, छन्नूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा सिंगरौल एवं वन्या सिंगरौल। लीजिए सुनिए फिल्म दम लगा के हैसा का गीत। गीतकार है अरुण ग्रोवर, संगीतकार है अनु मलिक, आवाज़ है पापोन और मोनाली ठाकुर की।

0: अपनों की नहीं गैरों की भी दुनिया महकाएं, मुस्कुराहट बांटें, खुशियां बांटें और बांटें हम सुख दुख सारे घर आंगन के फोन इन के सहारे। घर आंगन में मन की बातें बतियाएं, मनपसंद गीतों का आनंद पाएं, इसके लिए हमें फ़ोन लगाएं हर शनिवार सुबह 10:30 बजे से 11 बजे के बीच। हमारे नंबर हैं 231-917 और 231-918, कोड है 07774 और कार्यक्रम है आप सभी का पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम बात करें गीत सुने।
1: अगला पत्र प्राप्त हुआ है लेवा खेल मोहल्ला चांदूर विश्वा से नारायण भाई बिठुल राव खर्चे, ललिता रानी खर्चे, परी संजना खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, ब्रोनो उषा खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी। लीजिए सुनिए आप सभी के पसंद पर फिल्म ब्लैकमेल का गाना। आवाज़ है अरिजीत सिंह और परंपरा ठाकुर के।

अगला पत्र प्राप्त हुआ है देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेभुआनी, संगीता नेभुआनी, आकाश नेभुआनी, पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा, सरिता, सागर, आयुषी, हनी और सभी सदस्य आज़ाद बलिदरपुर मढ़ामऊ उत्तर प्रदेश से राजेंद्र यादव, भारती, उषा देवी भारती, दीपांजलि, अनुराग दीप। आइए आप सभी के फरमाइश पर सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक के आवाज़ में यह गीत।

0: एक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक के प्रारूप को दी मंजूरी। कोल लेवी घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल को हिरासत में लिया। और महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की पात्र हितग्राही महिलाओं के ई केवाईसी पंजीयन की तिथि 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। अब समाचार विस्तार से। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक को लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में व्यापार और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध बनाना है। इस वर्ष दिसंबर में प्रस्तावित नगरीय निकायों के आम और उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा के

लिए कल छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बैठक बुलाई गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने सचिव स्तरीय इस बैठक में अधिकारियों को समय सीमा में सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि प्रदेश के 15 नगरीय निकायों जिनमें 4 नगर पालिक निगम, 5 नगर पालिका परिषद तथा 6 नगर पंचायत शामिल है, इनका कार्यकाल इस वर्ष दिसंबर में समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही 2 नवगठित नगर पंचायतों में भी आम निर्वाचन की तैयारियां की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाने का फैसला किया है। सभी जिलों के आरटीओ तथा डीटीओ को अपने क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशनों के लिए जगह चिन्हित करने और एनओसी की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ऐप हैं जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। सरकार अब राज्य स्तर पर एकीकृत प्लेटफॉर्म ऐप बनाएगी। वहीं भारत सरकार भी यूनिवर्सल ईवी चार्जिंग ऐप ला रही है। कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल को आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने करीब 500 करोड़ रुपए के कोल लेवी घोटाला मामले में

के अलग अलग ऐप हैं जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। सरकार अब राज्य स्तर पर एकीकृत प्लेटफॉर्म ऐप बनाएगी, वहीं भारत सरकार भी यूनिवर्सल ईवी चार्जिंग ऐप ला रही है। कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल को आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने करीब 500 करोड़ रुपए के कोल लेवी घोटाला मामले में हिरासत में लिया है। राम गोपाल अग्रवाल के खिलाफ इस मामले में विशेष अदालत ने स्थायी वारंट जारी किया था। उनकी तलाश में कई जगह छापे भी मारे गए थे। कल दोपहर राम गोपाल अग्रवाल स्वयं ईओडब्ल्यू मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्हें हिरासत में ले लिया गया। महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की पात्र हितग्राही महिलाओं के ई केवाईसी के पंजीयन की तिथि 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। महिला और बाल विकास विभाग ने छूटी हुई हितग्राही महिलाओं से निर्धारित समय में ई केवाईसी कराने की अपील की है। राजनांदगांव के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र व्यास का कल निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। श्री व्यास प्रेस क्लब राजनांदगांव के संरक्षक थे। इसके अलावा श्री व्यास ने लंबे समय तक राजनांदगांव जिले के आकाशवाणी संवाददाता के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं। प्रदेश में अब तक सामान्य से 17% कम वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक पुलिस थाना रैंकिंग में बस्तर स्थित बोधघाट थाना को राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष देशभर के पुलिस थानों का मूल्यांकन विभिन्न मानकों पर किया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक के प्रारूप को दी मंजूरी। कोल लेवी घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल को हिरासत में लिया और महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की पात्र हितग्राही महिलाओं के ई केवाईसी पंजीयन की तिथि 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी और सीआईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कीजिए स्वीकार नमस्कार विमलेश का उमंग कार्यक्रम में
3: और अजीत का भी जोहार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलाऊ दास जय दास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ सच है तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: ग्राम चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य जिला बालोद छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर प्रमिला ठाकुर खुशबू और ज्योति ठाकुर
3: और छत्तीसगढ़ रूपापाली बसना से हीरालाल जगत देवेश ब्रिजेश जगत और एकता लावण्य कश्यप
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी से रामकुशल पटेल संतोषी पटेल दीपांशु पटेल दिव्या पटेल दीपांजलि पटेल दीपक पटेल और टेकलाल पटेल
2: और छत्तीसगढ़ पलारी से ही प्रकाश वर्मा निखिल वर्मा प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।

0: माँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश भेजने के लिए एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की अनूठी और रहस्यमयी दुनिया के बारे में।
0: पिछले दो दिनों में हमने जाना था पेड़ पौधों के बीच के संचार की व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और रोचक विषय पर।
1: जी हाँ श्रोताओं, आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जो हजारों हजार वर्षों से जीवित हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेड़ मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने हैं, और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता जब अपने विकास के प्रारंभिक चरण में थी उससे भी पुराने ये पेड़ हैं।
0: जी, ऐसे तो बहुत से वृक्ष हैं, लेकिन सबसे अधिक ज्ञात वृक्षों में से एक है ग्रैन एबियलो। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसकी आयु 5000 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये लैटिन अमेरिका के चिली देश में है। ये नॉन क्लोनल पेड़ है। अजीत जी, श्रोताओं को ये भी बता दें कि नॉन क्लोनल पेड़ किसे कहते हैं।
1: विमलेश जी, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार नॉन क्लोनल पेड़ उसे कहते हैं जिसका एक ही तना होता है। इसके तने से कई और नए तने नहीं निकलते हैं, यानी ये अपना क्लोन नहीं बनाते हैं। सरल उदाहरण से समझिए, यदि एक आम का पेड़ एक गुठली से उगा और 200 वर्षों या एक निश्चित अवधि तक जीवित रहा तो ये नॉन क्लोनल पेड़ है, क्योंकि इसके तने से कोई और नया पेड़ नहीं उगा। लेकिन इसके विपरीत,
0: क्लोनल पेड़ों में एक ही मूल वृक्ष से कई नए तने और पौधे निकलते रहते हैं। जैसे भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाला बरगद का पेड़, ये पेड़ अपना प्रतिरूप या क्लोन बना लेता है। बरगद की शाखाओं से ही बहुत सारी हवाई जटाएं निकलती हैं, ये भूमि तक पहुंच जाती हैं और उनसे फिर नई शाखाएं निकलने लगती हैं। बांस भी क्लोनल पेड़ों में गिना जाता है, क्योंकि इसके प्रकंदों से कई नए नए बांस के पौधे पनपने लगते हैं।
1: जी विमलेश जी, जब बरगद के पेड़ की बात आई तो मुझे अपने देश के ग्रेट बैनियन ट्री की भी याद आई। ये कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में स्थित है।
0: बिल्कुल।
1: बताते हैं कि इसकी आयु 300 से भी अधिक वर्ष आंकी गई है।
0: जी।
1: हवाई जटाओं या एरियल रूट्स के कारण ये पेड़ इतना फैल चुका है कि देखने में एक विशाल जंगल की तरह दिखाई देता है। है तो ये एक ही पेड़, लेकिन इसने अपने हजारों क्लोन बना लिए हैं।
0: जी अजीत जी, विशालता की दृष्टि से एक अद्भुत पेड़ है। इसका मूल तना बिजली गिरने से नष्ट हो गया था, लेकिन अपनी हजारों सहायक जड़ों के कारण ये आज भी जीवित है। जी, तो आज हम बात कर रहे थे दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। एक और पेड़ है जिसका नाम है मतुशेलाह। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसकी आयु लगभग 4850 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये ग्रेट बेसिन ब्रिसल पाइन कोन प्रजाति का पेड़ है। ये मानव जाति के अधिकांश लिखित इतिहास से भी पुराना माना जाता है।
1: माना जाता है श्रोताओं कि इस पाइन वृक्ष का अंकुरण संभवतः 2800 ईसा पूर्व हुआ होगा। विमलेश जी, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की आयु की, तो हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना भी बहुत रोचक होगा ना कि पेड़ों की आयु भला कैसे आंकी जाती है।
0: जी, पेड़ों की आयु को जानने के लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पेड़ों के वार्षिक वलयों की गिनती। इन वलयों को ट्री रिंग्स भी कहते हैं। आपने किसी कटे हुए पेड़ के तने को यदि देखा होगा कि उसमें कई वलय, छल्ले या रिंग्स दिखाई पड़ते हैं।
1: जी, माना जाता है कि एक छल्ला एक वर्ष को दिखाता है। पेड़ के तने में जितने छल्ले होंगे उसकी आयु लगभग उतने वर्षों की होगी। लेकिन विमलेश जी, फिर तो किसी पेड़ की आयु को जानने के लिए उसे काटना होगा।
0: जी नहीं अजीत जी, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक एक विशेष विधि से तने के भीतर से पतली लकड़ी का नमूना निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इससे पेड़ों को काटना नहीं पड़ता।
1: और हाँ श्रोताओ, कभी कभी तने की परिधि से भी पेड़ की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए उस पेड़ की वृद्धि की औसत दर का पता लगाना पड़ता है। विमलेश जी, एक और विधि है जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं।
0: जी अजीत जी, बहुत पुराने या विशेषकर मृत पेड़ों की लकड़ी के नमूनों से वैज्ञानिक उसकी उम्र का पता लगाते हैं।
1: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि पेड़ों के वलय मात्र उम्र ही नहीं बताते, बल्कि ये भी बताते हैं कि किसी विशेष वर्ष में मौसम कैसा था। चौड़े वाले रिंग्स संकेत देते हैं कि उस वर्ष में अच्छी वर्षा हुई थी, जबकि सकरे वलय सूखा या मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी विश्व के कुछ दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की उनकी आयु जानने की विधियों के बारे में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से,
1: आज का प्रश्न है क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
0: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें

0: फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको सीआईईटी एनसीईआरटी के बारे में ताजा जानकारी मिलती रहेगी।
1: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है सबसे प्यारा।
0: हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में भारत भूमि के गौरव और विविधता का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और बताया गया है क्यों हमारा देश सभी अन्य देशों से अनूठा है।

0: भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है सबसे प्यारा, और अब सुनते हैं कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल।
1: इस कार्यक्रम में उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तार से बताया गया है, विशेषकर उस समय की शासन व्यवस्था और संस्कृति की चर्चा की गई है।
2: आर्य लोग जब भारत में आए तो भारत का अधिकतर भाग जंगलों से ढका हुआ था। यहाँ कुछ लोग पहले से रहते थे,

आर्यों ने उन्हें दस्यु या दास कहा है। आर्य लोग मुख्यतः पशुपालक थे।

ये लोग अपने साथ गाय, बैल, भेड़ बकरियां और घोड़े लेकर आए थे। आर्यजन पहले पहले आज के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में आकर बसे थे। इस क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी जिसमें सदा जल रहता था। ये नदी अब सूख गई है। ऋग्वेद की अधिकतर ऋचाओं की रचना इसी नदी के तट पर हुई थी।

इस काल में समाज चार वर्णों में बंटने लगा था। ये वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना भी इसी उत्तर वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना भी इसी समय हुई थी। आर्यों का जीवन घुमक्कड़ी दशा से स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। कृषि अब उनका प्रमुख धंधा बन गया था। आइए चलते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्यों की दुनिया में।

0: अरे वो काली गाय कैसे धुली तुमने? ये तो लात मारती है।
1: इसने मेरी काली और लाल दोनों मटकियाँ तोड़ दी हैं। हाँ
2: अरे धृताची।
3: हाँ भैया।
2: तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा दूध से भरी मटकी माँ को दिया।
3: अच्छा।
0: अरे अरे अरे देवदत्त, तुम उस घोड़े को संभालो। अरे उसने खूटा उखाड़ लिया है।
2: नहीं तात, ये काम आप प्रवाहन को ही सौंपिए, मैं बकरी के इस नवजात बच्चे को संभाल रहा हूँ।
4: अरे, अरे मगर... भाई ये क्या हो रहा है आज? अभी तक सभी लोग पशुओं की बातचीत में ही लगे हो। इन्हें चराने नहीं ले जाना क्या? अब तो सूरज भी निकलने वाला है। अरे देवदत्त
2: जी,
4: तुम्हारा वो नया खेत बनाने का काम पूरा हुआ या नहीं?
2: पिताजी बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। वो उस खेत में बहुत झाड़ झंकार थे ना, तो उन्हें काटते काटते हमारी लोहे की कई कुल्हाड़ियां टूट गई। यज्ञ दत्त उन्हें ठीक करवाने बढ़ाइयों और लोहारों के घर गया है। उसके आते ही हम खेत चले जाएंगे।
4: ठीक है ठीक है। और हाँ, तुम वो बड़े बैलों वाली गाड़ी भी ले जाना।
2: जी पिताजी।
4: उसमें रखकर कुछ शीशम के लट्ठे ले आना।
2: ठीक है।
4: टूटे बाड़े को भी ठीक करना है। कल वो काला घोड़ा वहां से निकल भागा था।
2: जी पिताजी, गाड़ी तो हमने पहले ही तैयार कर ली है।
4: अरे प्रवाहन।
1: जी पिताजी।
4: तुम मुझे बहुत सुस्त और ढीले लग रहे हो।
1: वो पिताजी,
4: अजीत और हरिराज भी ढीले हो गए हैं। तुम्हारे खेतों की जुताई भी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ पता भी है? कार्तिक महीने के भी कुछ दिन चढ़ गए हैं।
1: जी वो
4: तुम्हारे चाचा के परिवार ने तो अपने खेतों में गेहूं और जौ बो भी दिए।
1: पिताजी हमारे खेत भी गेहूं और जौ की बुआई के लिए तैयारी समझिए, बस एक दो जुताई और करनी है। क्यों अजीत?
0: हाँ हाँ पिताजी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। और इस साल हमारी उड़द और धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। अरे हाँ, अब तक तो हम उसकी

0: कटाई और मड़ाई में ही लगे रह गए थे, क्यों देवदत्त?
1: हाँ हाँ पिताजी। और पिताजी, हम तो अपने साथ हरिराज शत्रु मर्दन को भी ले जा रहे हैं।
0: हाँ।
1: आज हम चार चार बैलों वाले तीन हलों से जुताई करेंगे, खेत बस तैयारी समझिए।
2: नहीं नहीं, हरिराज और शत्रुमर्दन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे खेतों में जी। उन्हें कल हस्तिनापुर जाना है।
0: पर क्यों पिताजी?
2: वहाँ महाराजा हरिराज जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया है, इन्हें तो जाने की तैयारी करनी होगी, वहाँ रथों की दौड़ भी होगी।
0: पिताजी, हमारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है।
1: जी पिताजी,
0: हमारा रथ और घोड़े दोनों तैयार हैं।
2: बहुत अच्छा।
0: और हाँ पिताजी, हमने अपने घोड़ों को भी खूब खिलाया पिलाया है, और पता है अब तो वो भी बहुत फुर्तीले हो गए हैं।
1: पिताजी, देवों की इच्छा हुई तो रथों की दौड़ में इस बार हम ही जीतेंगे।
0: हाँ पिताजी, हम ही जीतेंगे।
2: देव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। देखो, तुम लोग अपने साथ कुछ गेहूं, जौ और चावल ले जाना।
0: जी पिताजी।
2: सम्राट ने यज्ञ के अवसर पर भंडारा भी चला रखा है।
0: अच्छा पिताजी।
2: सभी वर्णों के लोग भोजन कर रहे हैं, यही नहीं गुरुकुलों के ब्रह्मचारी, गृहस्थ और साधु सन्यासी भी यज्ञ में बुलाए गए हैं।
1: अच्छा पिताजी, हमने अन्न के साथ साथ महाराज को भेंट देने के लिए माँ के द्वारा बुना हुआ उत्तरीय भी रख लिया है। बहन धृताची ने इस उत्तरीय पर सोने के तारों से बहुत सुंदर कढ़ाई भी की है।
3: हाँ। ये मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है और कौन कहाँ जा रहा है?
2: आओ पुत्री आओ, तुम्हारे ये भाई हस्तिनापुर जा रहे हैं।
3: अच्छा पिताजी, इनसे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा दीजिए ना, सुना है हस्तिनापुर के सुनार बहुत सुंदर कंगन बनाते हैं।
1: चल चल बढ़िया ही कंगन वाली। पिछले वर्ष तो तुझे सोने के कुंडल और हार ला कर दिए थे मैंने,
4: और क्या,
1: अब कुछ नहीं लाऊंगा। हाँ
3: मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया, देखो मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने छुपा छुपा कर तुम्हारे घोड़ों को घी भी पिलाया है।
1: अच्छा अच्छा, चल ठीक है, ले ही आएंगे। अब तो खुश।
2: अरे ये तो खुश हो गई, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हाँ, अपने हथियारों को ठीक ठाक करके रख लो।
0: जी पिताजी।
2: कल सूर्योदय से पहले ही चल देना। आजकल इस रास्ते वाले वन में शेरों, चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया है। अंधेरा होने से पहले ही वन पार करके अपनी बुआ के गांव पहुंच जाना।
1: जी पिताजी, हमने लोहे की फाल वाले भाले और लोहे की नोक वाले पैने तीर भी रख लिए हैं, भला हमारे इन तीरों के सामने वो क्या टिकेंगे।
0: और पिताजी, एक परिव्राजक के द्वारा हमने अपने फुफेरे भाइयों को भी सूचित कर दिया है, वो भी हमारे साथ रथों की दौड़ में हिस्सा लेने जाएंगे।
1: भैया, सुना है इस बार रथों की दौड़ में भाग लेने के लिए कौशल, काशी और विदेह से भी रथ आ रहे हैं।
0: हाँ।
1: इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन है।
2: हाँ ये तो है।
5: हाँ, हाँ, हाँ, बड़ा आनंद आएगा।
6: और शुरू हो गई रथों की दौड़।

0: इस बार तो हमारा रथ ही जीतेगा।
1: अरे हमने भी पूरी तैयारी की है,
0: याद है पिछले वर्ष रथों की दौड़ में कितना आनंद आया था। मित्र क्या इस बार भी तुम्हारे गांव का वही रथ दौड़ाने वाला आया है?
1: अरे नहीं भाई नहीं, इस बार दूसरा रथ दौड़ाने वाला आ रहा है। गांव में होने वाली प्रतियोगिता में तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया था।
0: चलो देखते क्या होता है।
2: सुने सुने सुने, यज्ञ के आयोजन के इस अवसर पर अब प्रारंभ होती है रथों की दौड़।
3: अरे वो देखो वो देखो,
0: क्या
3: रथ की दौड़ शुरू हो गई। अरे वो देखो तो शुरू हो गई।
0: अरे क्या बांके और सजीले सवार है। वाह वाह
3: वाह वाह वाह वाह, देखो देखो वो देखो बीच वाला रथ।
2: इस वर्ष के रथों की दौड़ के आयोजन में विदेह का रथ विजेता घोषित किया जाता है।

ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, इसमें राजा की शक्ति की परीक्षा भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विस्तार हो रहा था।

राजा की शक्ति, पदवी और दबदबा बढ़ गया था। करों की वसूली होने लगी थी। राजकोष में खूब धन जमा होने लगा था। राजकाज चलाने में पुरोहित, सेनापति, रानियां और कुछ अन्य अधिकारी भी मदद करते थे। ग्राम पंचायतें प्रशासन संभालती थी। राजा को गांव से बड़ी मदद मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के मौके पर गांव और कबीलों से लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी। शिक्षा के लिए बालकों को गुरुकुल में जाना पड़ता था। गुरुकुल वनों के शांत और सुरम्य स्थानों पर बनाए जाते

0: गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी मेरी बात को ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार दे रहा हूं। और समाचार ये है कि आज शाम तक आचार्य शाकल्य यहां पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसी बात को दोहराने के लिए मैं यहां इसलिए उपस्थित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम की जो प्रतिष्ठा और परंपरा रही है वो सर्वदा बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि स्वागत कार्य के लिए जिस ब्रह्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करने के प्रयास में तुरंत लग जाए। अंत में मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरी बात को पूरी शांति से सुना और समझा, धन्यवाद।
1: मित्र, कुलपति का आदेश सुना तुमने?
2: कैसा आदेश मित्र? मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। मैं तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में ही उलझा था कि आज एक और समस्या आ गई। गुरुजी कह रहे हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूरे में से पूरा निकाल देने पर भी पूरा ही बच जाता है।
1: भोले ब्रह्मचारी, अब इस उलझन को छोड़ो और कुलपति के आदेश पर ध्यान दो और आचार्य शाकल्य के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। सुना है आचार्य आयुर्वेद आदि अनेक विद्याओं के पंडित हैं।
2: अच्छा,
1: वे हमारे गुरुकुल में कुछ दिन रहकर छात्रों को इन विषयों की विशेष शिक्षा देंगे।
3: अरे वो देखो कितना सुंदर घोड़ा है।
4: अरे हाँ, चलो पास से देखते हैं।
3: हाँ, चलो चलो।
4: अरे ये देखो कितना अच्छा घोड़ा।
2: वाह,
4: हाँ,
2: इसकी काठी तो देखो कितनी सुंदर है।
4: इसे पकड़ लेते हैं। हाँ, इसे पकड़ लेते हैं।
3: चलो चलो।
4: अरे वाह, अरे अरे, चलो इसे पकड़ लेते हैं।
3: अरे ये पकड़ा।
2: ये कोलाहल कैसा है?
5: छोड़ दो, छोड़ दो। ये महाराजा धीराज जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। तुम्हें इसके मस्तक पर सम्राट का विजय पत्र नहीं दिखा? इस घोड़े की सुनहरी लगाम और काठी तो दूर से दिख जाती है। छोड़ दो, छोड़ दो, शीघ्र छोड़ दो, नहीं तो हमारे तीरों के तीखे प्रहार सहने पड़ेंगे।
2: अरे ये तो हमारे गुरुकुल के एक क्षत्रिय कुमारों ने घोड़े को पकड़ रखा है। अरे अरे, इन पर तो सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है।
3: अरे चलो चलो, भाग चले, आचार्य को बता दे, कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध ही ना कर बैठे।
2: अरे रुको तो सही। अरे देखो देखो,
3: क्या
2: आचार्य तो वही पहुंच गए हैं। और हाँ, वो देखो, आचार्य की आज्ञा मानकर क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है।
3: हाँ, अच्छा हुआ, संकट टल गया। अब ये सैनिक इस घोड़े को सारे राज्यों में घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे।
2: हाँ,
3: जहाँ अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे।
2: हाँ,
3: उनका प्रभाव, कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी।

0: कबीले के सरदार से वो चक्रवर्ती सम्राट बने, फिर उनके बेटे सम्राट बने और फिर उनके बेटे। इस तरह राज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त हो गया और ये सम्राट एक काल को दूसरे काल से जोड़ते चले गए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल, और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी और सीआईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब समय हो चला है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम शीर्षक पर आधारित चयन का, और आज का मेरा शीर्षक है रंग। श्रोताओं, रंग केवल आंखों से दिखाई देने वाले दृश्य ही नहीं है, बल्कि वे हमारी भावनाओं की भाषा, हमारे विचारों की अभिव्यक्ति और जीवन की सुंदरता का सबसे सजीव एहसास है। यदि इस संसार से रंगों को हटा दिया जाए तो मानो प्रकृति की मुस्कान ही फीकी पड़ जाए। नीला रंग आकाश की विशालता का संदेश देता है, हरा रंग धरती की हरियाली और जीवन की ताजगी का प्रतीक है, पीला रंग आशा और ऊर्जा का संचार करता है, जबकि लाल रंग प्रेम, साहस और उत्साह का परिचय देता है। प्रकृति ने अपने हर रूप में रंगों का ऐसा अद्भुत संसार रचा है जो हर पल हमें कुछ ना कुछ महसूस कराता है। हमारे जीवन की खुशियां भी रंगों की तरह ही होती है। कभी सफलता का सुनहरा रंग, कभी रिश्तों का स्नेहिल रंग, तो कभी उम्मीदों के इंद्रधनुष हमारे जीवन को और भी अधिक सुंदर बना देता है। इसीलिए केवल अपने आसपास ही नहीं, बल्कि अपने विचारों और व्यवहारों में भी प्रेम, सकारात्मकता, विश्वास और खुशियों के रंग भरते रहिए। इन्हीं रंगों के साथ सभी श्रोताओं का अभिनंदन। मैं हूं आपकी दोस्त मनीषा, और चलिए शुरू करते हैं रंगों का सफर। लीजिए सुनिए फिल्म रोटी का गीत। गीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, संगीतकार हैं आनंद बख्शी और आवाज़ें हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, जिस तरह प्रकृति का हर रंग अपनी अलग पहचान और महत्व रखता है, उसी तरह हमारे जीवन का हर अनुभव भी हमें और हमें कुछ न कुछ सिखाता है। कभी खुशियों के चमकीले रंग हमें मुस्कुराना सिखाते हैं, तो कभी संघर्षों के गहरे रंग हमें मजबूत बनाते हैं। जीवन का वास्तविक सौंदर्य इन्हीं विविध रंगों के संतुलन में छिपा हुआ है। तो लीजिए, सुनिए बाजीराव मस्ताने फिल्म का गीत। गीतकार हैं सिद्धार्थ गरिमा, संगीतकार हैं संजय लीला भंसाली, आवाज़ें हैं श्रेया घोषाल और पंडित बिरजू महाराज की।

श्रोताओं, रंग केवल परिवेश को ही नहीं बल्कि हमारे मन और व्यक्तित्व को भी प्रभावित करते हैं। एक रंग हमारी यादों को ताज़ा कर देता है तो दूसरा नई उम्मीदों का दीप जला देता है। शायद यही कारण है कि हर त्यौहार, हर उत्सव और हर खुशी के मौके पर रंगों का विशेष महत्व होता है। रंग हमें जोड़ते हैं, अपनापन बढ़ाते हैं और जीवन में उत्साह का संचार करते हैं। लीजिए सुनिए फिल्म सिलसिला का गीत। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं शिव हरी व साथी आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक

फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।

0: अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
0: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडिया वेव 1260 किलोहर्ट्ज के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।
2: यदि रंग की बात हो और संगीत का जिक्र ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? जैसे रंग हमारे जीवन को खूबसूरती देती है, वैसे ही संगीत हमारी भावनाओं को स्वर देता है। जब रंग और सुर एक साथ मिलते हैं तो जीवन और भी मधुर, आनंदमय और यादगार बन जाता है। तो लीजिए सुनिए दिलवाले फिल्म का गीत। गीतकार हैं अमित भट्टाचार्य, संगीतकार हैं प्रीतम और इसे सुंदर आवाज़ में सजाया है अरिजीत सिंह ने।

0: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
1: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
0: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
1: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
0: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी अंबिकापुर से संपर्क करें 07774230600। नंबर एक बार फिर 07774230600।
2: श्रोताओं, हर दिन हमें एक नया रंग दिखता है, कभी खुशियों का, कभी उम्मीदों का, तो कभी अनुभवों का। हर रंग हमें कुछ ना कुछ सिखाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, इसलिए हमें हर पल को खोलकर अपनाना चाहिए और अपने जीवन को प्रेम, विश्वास और मुस्कान के खूबसूरत रंगों से सजाना चाहिए। लीजिए सुनिए फिल्म चांदनी का गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं शिव हरी और आवाज़ है जॉली मुखर्जी व श्रीदेवी की।

0: इसी के साथ कार्यक्रम चयन यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
2: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टीकल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
1: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश

0: का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगेय पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी दिन में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भाग, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में आधे प्रतिशत से अधिक की बढ़त देखी गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण।
2: आधुनिक तकनीक पर चर्चा करेंगे जो वर्तमान समय में जल संकट, बढ़ती सिंचाई लागत और बदलती जलवायु की परिस्थितियों में किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है। इस तकनीक का नाम है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, जिसमें मुख्य रूप से ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई शामिल है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है पानी की कमी। कई क्षेत्रों में भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, वर्षा अनियमित हो गई है और सिंचाई के पारंपरिक तरीके अधिक पानी की खपत करते हैं। ऐसे समय में प्रत्येक बूंद पानी का सही उपयोग करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म सिंचाई तकनीक विकसित की गई है। इस तकनीक का उद्देश्य है कि पौधों को उतना ही पानी मिले जितनी वास्तव में आवश्यकता है। इससे पानी की बचत होती है, पौधों की वृद्धि बेहतर होती है और उत्पादन की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं ड्रिप सिंचाई की। इस प्रणाली में पाइपों और ड्रिपर की सहायता से पानी सीधे पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद पहुँचाया जाता है। इससे खेत के केवल उसी भाग में नमी रहती है जहां पौधे लगे होते हैं। परिणाम स्वरूप पानी की बर्बादी नहीं होती और खरपतवार भी कम उगते हैं। ड्रिप सिंचाई विशेष रूप से सब्जियों, फलदार पौधों, गन्ना, कपास, मिर्च, टमाटर, अंगूर, अनार, केला, पपीता और अन्य बागवानी फसलों के लिए अत्यंत लाभदायक मानी जाती है। आज कई किसान धान और अन्य फसलों में भी संशोधित ड्रिप प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्प्रिंकलर सिंचाई की। इसमें पाइप और स्प्रिंकलर की सहायता से पानी वर्षा की बूंदों की तरह पूरे खेत में फैलाया जाता है। यह तकनीक गेहूं, चना

0: मसूर, मूंग, मूंगफली, चारा फसल और हल्की रेतीली मिट्टी वाले क्षेत्रों में काफ़ी उपयोगी है। सूक्ष्म सिंचाई का सबसे बड़ा लाभ पानी की बचत है। सामान्य सिंचाई की तुलना में 30 से 60% तक पानी बचाया जा सकता है। जहां पहले एक सिंचाई में कई घंटे लगते थे, वहीं सूक्ष्म सिंचाई से कम समय में बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। पानी के साथ साथ बिजली और डीजल की भी बचत होती है। जब कम पानी पंप करना पड़ता है तो ऊर्जा की खपत भी कम होती है और इससे खेती की लागत घटती है और किसानों की आय बढ़ने में सहायता मिलती है। इस तकनीक का एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी है कि खेत में अधिक पानी भरने की समस्या नहीं होती। कई बार अधिक सिंचाई के कारण पौधों की जड़ें सड़ जाती है या पोषक तत्व बह जाते हैं। ड्रिप प्रणाली इस समस्या को काफ़ी हद तक रोकती है। यदि किसान चाहें तो ड्रिप प्रणाली के माध्यम से घुलनशील उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं। इसे फर्टिगेशन कहा जाता है। इससे उर्वरक सीधे जड़ों तक पहुंचते हैं, उनकी बर्बादी कम होती है और पौधों को पोषण अधिक प्रभावी ढंग से मिलता है। सूक्ष्म सिंचाई अपनाने से खरपतवार भी कम उगते हैं क्योंकि पूरे खेत में नमी नहीं फैलती। इससे निदाई गुड़ाई पर होने वाला खर्च भी कम होने लगता है। हालांकि इस प्रणाली को अपनाते समय कुछ सावधानियां भी आवश्यक हैं। पानी स्वच्छ होना चाहिए ताकि ड्रिपर बंद ना हो। समय समय पर फिल्टर की सफाई करनी चाहिए और पाइपलाइन का निरीक्षण करते रहना चाहिए। यदि कहीं रिसाव हो तो उसे तुरंत ठीक करना चाहिए। आज केंद्र और राज्य सरकारें सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को अनुदान भी उपलब्ध कराती हैं। इच्छुक किसान अपने के कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बदलते मौसम में सूक्ष्म सिंचाई का महत्व बढ़ गया है। कभी कम वर्षा, कभी अधिक वर्षा और कभी लंबे सूखे जैसी परिस्थितियों में पानी का वैज्ञानिक प्रबंधन ही खेती को सुरक्षित बना सकता है। भविष्य की खेती वही होगी जो कम संसाधनों में अधिक उत्पादन कर सके।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

नमस्कार बहनों, घर आंगन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी रितु सिंह। बहनों, बरसात की ये रिमझिम फुहारें जहां मन को सुकून देती हैं, वहीं वे अपने साथ कई तरह की बीमारियों का खतरा भी लेकर आती हैं। ऐसे समय में घर की रसोई सिर्फ स्वाद का नहीं बल्कि पूरे परिवार की सेहत का आधार बन जाती है और इस रसोई की धड़कन यानी कि जान होती है घर की स्त्री। कहते हैं स्वस्थ परिवार की शुरुआत रसोई से होती है, इसलिए इस मौसम में भोजन बनाते समय थोड़ी सी सावधानी पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकती है। बहनों, बरसात में ये कोशिश रहे कि हम भोजन हमेशा ताज़ा और गर्म खाएं। लंबे समय तक रखा हुआ भोजन या खुले में मिलने वाले खाद्य पदार्थ संक्रमण का कारण बन हमारी सेहत बिगाड़ सकते हैं। मौसमी हरी सब्जियां, दालें, अंकुरित अनाज, ताज़ा दही, नींबू, आंवला और मौसमी फल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। बहनों, इसके साथ ही हमें हमारे बच्चों की सेहत के अनुकूल उन्हें ऐसा लंच उपलब्ध कराना है जिसमें स्वास्थ्य के साथ पोषण भी हो। घर के बने चीले, उपमा, पोहा, मूंग दाल का चीला, इडली, दालों में सब्जियों से भरपूर पराठे जैसे विकल्प बच्चों को स्वाद के साथ ऊर्जा और सेहत भी देंगे। बहनों, इन तमाम बातों के साथ ही हमें इस मौसम में पानी की शुद्धता का भी विशेष ध्यान रखना होता है। पीने के पानी को उबालकर या फिल्टर करके ही उपयोग करना सही होता है। साथ ही भोजन बनाने और खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोने की आदत पूरे परिवार को कई बीमारियों से बचा सकती है।

बहनों, इन सभी बातों के साथ एक ज़रूरी बात जो अक्सर ही हम सभी स्त्रियां भूल जाती हैं, हम पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं। ऐसे में भले ही हमारी थाली आखिर में सजे पर उसमें भी पोषण भरपूर हो, इसका ख्याल रहे। हमारे दिन भर के आहार में दूध, मौसमी फल व पर्याप्त पानी ज़रूर शामिल हो। बहनों, बरसात का ये मौसम केवल सावधानी का नहीं, परिवार के साथ बैठकर स्नेह से भोजन करने का भी है। दिन में एक बार ऐसा प्रयास ज़रूर करें जब सभी साथ बैठकर भोजन करें, इससे हमारे रिश्तों को भी पोषण ज़रूर मिलेगा। और आज के परिवेश में सबसे आवश्यक यही है बहनों कि हम सभी अपने संबंधों को भी पोषण दें। और बहनों, आपकी हमारी इस बातचीत के बाद अब कार्यक्रम में समय है एक गीत सुनने का, तो आइए सुनते हैं इला अरुण और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म लम्हे का ये गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: और बहनों, इस जरूरी संदेश के बाद अब कार्यक्रम में समय है आपके और हमारे पसंदीदा गुलदस्ता क्रम का, जिसमें हम हर बार आपके लिए कुछ अलग लेकर आते हैं। और आज बारी है कहानी पाठ की, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुलदस्ता क्रम में कहानी पाठ, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं अनुराधा श्रीवास्तव, और कहानी का शीर्षक है डॉक्टर आभा। तो आइए सुनते हैं ये कहानी पाठ।
5: बहनों को मैं अनुराधा श्रीवास्तव का नमस्कार है। बहनों, आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है और महसूस भी किया है। ये कहानी है आभा की, और मेरी कहानी का शीर्षक भी है डॉक्टर आभा। आभा का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उसकी माँ का नाम छेरमा था। वो घर घर झाड़ू पोछा बर्तन ये सारे काम करती थी। छेरमा जब आभा का जन्म हुआ तो उस समय एक डॉक्टर मैडम के यहाँ काम करती थी। डॉक्टर मैडम का नाम था डॉक्टर आभा शर्मा। उन्हीं से प्रभावित होकर छेरमा ने अपनी बेटी का नाम आभा रखा और यह आशा की कि उसकी बेटी एक दिन बड़ी होकर के डॉक्टर बनेगी और नाम कमाएगी। पर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। आभा बहुत छोटी थी तभी छेरमा की अचानक मौत हो गई। छेरमा के जाने के बाद आभा के पिताजी और आभा दोनों अकेले हो गए। आभा के पिताजी धोबी का काम करते थे। घर चलाने के लिए उनकी एक छोटी सी गुमटी थी, पर खर्चा उससे पूरा नहीं आता था, इसीलिए छेरमा घर घर झाड़ू पोछा बर्तन करती थी। अब छेरमा नहीं थी, पिता भी थोड़े शराबी थे, और अब आभा का जीवन बहुत कठिन हो गया। वो अपने एक किराए की झोपड़ी में रहते थे और आभा का जीवन और मुश्किल होता जा रहा था। और इसमें भी सोने पे सुहागा कि उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। ये दूसरी सौतेली माँ जो आई वो कोई बुरी नहीं थी, लेकिन कोई अच्छी भी नहीं थी। उसका कहना था कि अगर आभा को इस घर में रहना है तो पैसे कमा के लाने पड़ेंगे, मैं उसकी सेवा नहीं करूंगी। और आभा को तो पढ़ने की इच्छा थी, तो माँ की सर जहाँ थी कि पैसे कमा कर लाओ, और आभा की इच्छा थी कि पढ़ना है। तो बीच का रास्ता आभा ने निकाला कि वो 12 से 5 स्कूल पढ़ने जाती और सुबह शाम मेरे घर के सामने वाले घर में ही झाड़ू पोछा बर्तन इसका काम करती थी। अब आभा के स्कूल जाने से सौतेली माँ को दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आभा पैसे कमा के ला रही थी। दिन बीतते गए। आभा पढ़ाई में बहुत तेज थी, मेरी बेटी के साथ ही खेलती थी। इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाली मेरी बेटी और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली आभा, दोनों में अच्छी मित्रता थी। 10वीं का रिजल्ट जब आया तो आभा 1st डिवीजन से पास हुई। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात थी। आगे वो विज्ञान लेके पढ़ना चाहती थी, लेकिन किताबों का खर्च वो उठा नहीं सकती थी। फीस तो फिर भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा था, जो उसकी माँ देने को तैयार न थी। मैंने मजाक में ही कहा कि चल पीरियोडिक टेबल याद करके आना, तो फिर देखती हूँ कि आगे तू क्या करेगी। सच मानिए, तीसरे दिन ही उसने वो पूरा चार्ट याद करके मुझे सुना दिया। मैं उससे बहुत खुश हुई। मैंने कहा ठीक है, तू बड़ी तेज है, पढ़ाई कर, तेरी पढ़ाई का पूरा खर्चा मेरा। अब आभा इस तरह पढ़ती लिखती रही, लेकिन कहते हैं ना, जो भाग्य में लिखा हो वही होता है। उसके पिताजी को लकवा मार गया। 12वीं का रिजल्ट आया, आभा 1st डिवीजन तो पास हो गई और अच्छे नंबर भी लाई, लेकिन अब पिताजी की बीमारी के कारण उसने पढ़ाई छोड़ दी। वो घर पे रहने लगी, दुकान संभालती, झाड़ू पोछा बर्तन करती, अपने पिता की सेवा करती। और पिताजी भी अगले 6 महीने में संसार छोड़कर चले गए। आभा के लिए जीवन और कष्टप्रद हो गया, लेकिन वो जी जान से अपनी माँ और छोटे भाइयों की सेवा करती। पर उसकी सौतेली माँ को शक था कि आभा शायद सब पे अपना हक जमाने लगे। जल्दी उसकी शादी करके घर से विदा कर देना ही सबसे आसान तरीका है। माँ ने उसकी जल्दी ही शादी कर दी। ससुराल का जीवन भी आभा के लिए बिल्कुल सरल नहीं था। एक तो उसका पति समझदार नहीं था, सो रोज लड़ाई झगड़ा करता। दूसरा

0: अब वो कुछ कमा के नहीं लाता, इसलिए सास ताने देती थी। अब आभा ने निर्णय लिया कि वो खुद ही कुछ करेगी। वह वापस अपने उसी झाड़ू पोछा बर्तन वाली जिंदगी में लौट आई, और इस बार उसके साथ उसकी एक छोटी सी बेटी भी उसके गोद में थी। मेरी बेटी अब MBBS कर रही थी और आभा घर में झाड़ू पोछा बर्तन। ये मुझे बहुत कष्टप्रद लगता था। मैंने उससे कहा भी, आभा तुझ में जो ताकत थी संसार बदलने की, तू कहाँ ना कहाँ पहुँच सकती थी, कहाँ तू पचड़े में पड़ गई बच्चा। आभा रो पड़ी, बोली, मौसी आपने मुझ पर भरोसा किया है, मैं ज़रूर आगे बढ़ूंगी, कुछ बदल के दिखाऊंगी। और यहीं से शुरू हुई उसकी नई जिंदगी। जब आभा ने ठान लिया कि ये जिंदगी नहीं जीनी, इससे बाहर निकलना है, खुद भी और अपनी बेटी को भी निकालना है, फिर उसने तैयारी की। वो घर घर झाड़ू पोछा बर्तन के साथ साथ कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करती। लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन मैंने ही उसे दिलाया। जिन घरों में काम करती वहाँ भी अगर कोई पुरानी कंपटीशन की किताबें रद्दी में बिक रही होती या ऐसे ही रखी हुई होती तो उन्हें मांग लेती। रद्दी वाला भी जान गया था कि आभा को पढ़ाई का शौक है, तो वो खुद उसे किताबें दिखाता कि देख भाई, अगर ये तेरे काम की है तो रख ले। आभा आज भी उस रद्दी वाले का बड़ा एहसान मानती है। इतनी मेहनत के बाद आभा ने लगातार पढ़ते और कॉम्पिटिशन देते हुए आखिरकार एक सरकारी दफ्तर में नौकरी पा ही ली। जिस दिन उसकी नौकरी लगी, मेरे घर मिठाई लेके आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मौसी मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और अब मैं अपनी बेटी को अपने जैसा जीवन नहीं जीने दूंगी, उसे आगे बढ़ाऊंगी। नौकरी लगने के बाद आभा का पढ़ना बंद नहीं हुआ। उसे जो भी पढ़ने लायक जहाँ मिलता वो उसे तुरंत पढ़ लेती। उसके मन में कसक थी कि मुझे और पढ़ना है, लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी अपनी बेटी को आगे बढ़ाने की थी। उसके मन की कसक, उसकी मेहनत और उसके जज्बे ने उसकी बेटी को भी बहुत प्रेरित किया। समय बीतता गया। आभा की बेटी ने नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। अब वो बिलासपुर में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। मैंने आभा से कहा, ये पीढ़ियों का सपना था आभा, छेरमा जो तेरी माँ चाहती थी कि तू डॉक्टर बने, वो तो ना हो सका, लेकिन तेरी लगन और तेरी बेटी की मेहनत ने वो सपना पूरा किया। तेरी मेहनत से प्रेरित होकर ही तेरी बेटी आज यहाँ आगे पहुँची है और डॉक्टर बन रही है। नौकरी लगने के बाद भी आभा ने अपना सेवा भाव नहीं छोड़ा। वो रोज कभी एक तो कभी डेढ़ घंटा सरकारी अस्पताल में सेवा करती थी। कभी किसी बीमार के लिए खाना बनाकर ले जाना, कभी एकाध किलो फल ले जाना, किसी बच्चे के लिए दूध, तो कभी कंबल, और कभी सिर्फ किसी बीमार के साथ बैठकर उससे बातें करना, उसका सिर सहला देना, ऐसे काम वो लगातार करती रहती थी। एक बार मैंने उससे पूछा कि इतनी बिजी रहती हो, ये सब काम क्यों करती हो? वो जवाब देती है, मैं कुछ नहीं करती, वो ईश्वर कराता है मुझसे, मैं तो बस साधन मात्र हूँ। जैसे ईश्वर ने मेरी मदद की, वैसे मैं इनकी मदद करती हूँ, ताकि ये भी जीवन में आगे बढ़ें, इन्हें भी महसूस हो कि कोई इनका भी अपना है। और आज की बात ही अलग है। आज आभा मेरे घर आई, लेकिन कोई मिठाई का डब्बा नहीं लाई, कोई बात नहीं, बस आई जैसे अपनी नौकरी लगने पर, बेटी के नीट पास करने पर वो मीठा लेकर आती थी। पर इस बार आते ही उसने कहा, मौसी मेरे लिए आंटे का हलवा बना दो। इतने अधिकार से कहा कि मैं कुछ कह न सकी, ठीक है अभी बनाती हूँ। वो बैठी रही, मैंने हलवा बनाया, वो हलवा खाई और खाने के बाद उसने मेरे पैर छुए, कहा, मौसी आपने मेरा मुंह मीठा कराया है, मेरे सिर के ऊपर अब आप ही हैं। और कहा कि मौसी तुम्हें दुख था ना कि माँ चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं और मैं डॉक्टर नहीं बनी, लेकिन अब ये दुख भी खत्म, माँ की इच्छा मैंने पूरी की, आज मैं डॉक्टर बन गई हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, कैसे? आभा बोली, मौसी मेरी PhD कंप्लीट हो गई है और अब मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। मैं इलाज करने वाली डॉक्टर तो नहीं बन पाई, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर जरूर लग गया और माँ का सपना अब पूरा हुआ। उस समय मेरा मन इतना प्रफुल्लित हुआ और खुशी के आंसू लगातार मेरी आंखों से गिरने लगे। ये पल बता रहा है कि महिला चाहे तो सब कुछ बदल सकती है। वो खुद को तो बदलती है, अपने साथ साथ वो परिवार और समाज को भी बदलती है। यही असली महिला सशक्तिकरण है, जिसे करके दिखाया हमारी प्यारी आभा ने। धन्यवाद।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी

ये गुलदस्ता क्रम के अंतर्गत कहानी पाठ, जिसे प्रस्तुत किया अनुराधा श्रीवास्तव ने, और कहानी का शीर्षक था डॉक्टर आभा। और गुलदस्ता क्रम के बाद अब कार्यक्रम में समय है एक और गीत का, तो आइए सुनते हैं यशुदास और हेमलता की आवाज़ों में फिल्म चितचोर का ये खूबसूरत सा गीत।

और बहनों, इस गीत के बाद कार्यक्रम में समय है घरेलू नुस्खों का। बहनों, बारिश का मौसम रिमझिम फुहारों के साथ बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां लेकर आता है। ऐसे में हमारी थोड़ी सी सजगता हमें इस मौसम में होने वाले संक्रमणों से बचा सकती है। तो आज घरेलू नुस्खों में शामिल है ऐसे उपाय जो हमें इस मौसम में भी स्वस्थ बनाए रखेंगे। बहनों, बारिश के मौसम में हमें प्यास लगने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। बरसात में पसीना कम आता है, इसलिए हम पानी कम पीते हैं। हर एक दो घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पीने की आदत यदि हम बना कर रखें तो इस मौसम में भी हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। हम थकान, कब्ज और सिर दर्द जैसी समस्याओं से बच सकेंगे। और बहनों, इस मौसम में धूप भी कम मिलती है। ऐसे में जब भी दिन में धूप मिले तो 10 से 15 मिनट हम धूप में या तो टहल लें या कुछ देर बैठ जाएं। इससे शरीर को विटामिन डी बनाने में मदद मिलेगी और हमारा मन भी तरोताज़ा रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और बहनों, लगातार होती बारिश कई बार हमारे कपड़ों को और जो हमारे फुटवियर होते हैं, हमारे जूते, उन्हें भी हमेशा ही गीला रखती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम गीले जूतों को ना पहने, क्योंकि इससे हमारे पैरों में फंगल इन्फेक्शन, संक्रमण होने का खतरा रहता है। रात को अपने पैरों को यदि हम थोड़ी देर गुनगुने पानी में डुबा कर रखें, उन्हें धोएं गुनगुने पानी से और फिर बाहर निकाल कर अच्छी तरह से सुखा लें और फिर कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम यदि अपने पैरों पर लगा लें तो इससे भी हमारे पैर फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी है बहनों, क्योंकि बारिश के इन दिनों में हमारे पैर की उंगलियों के बीच कई बार किन्हीं को बहुत कम और किन्हीं को बहुत ज़्यादा ही ये इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो बहनों, ये छोटे छोटे उपाय अपना कर हम अपने आप को इस मौसम में भी पूरी तरह से स्वस्थ बनाकर रख सकते हैं। और बहनों, इन घरेलू नुस्खों के बाद अब कार्यक्रम में समय है कार्यक्रम के आखिर में सुनने का एक गीत। तो आइए सुनते हैं हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गीत, जिसमें आवाज़ है लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम व साथियों की। आइए सुनते हैं।

तो बहनों ये गीत थी आज के हमारे घर आंगन कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। आज का हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और ये बताने के लिए हमारे कार्यक्रम का पता नोट करें। पता है कार्यक्रम घर आंगन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अंबिकापुर पोस्ट बॉक्स नंबर 27 पिन कोड है 497001। और बहनों आप हमें मेल भी कर सकती हैं, इसके लिए हमारा मेल एड्रेस है gharanganair@gmail.com। तो आप हमें मेल करें, पत्र लिखें, अपने सुझाव और अपनी समीक्षा हम तक लिख भेजें। और आज के घर आंगन कार्यक्रम से अब मुझे दीजिए इजाज़त, आप सभी को ऋतु सिंह का नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:40 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। हमें पहला मेल प्राप्त हुआ है अकोला से सुयश रॉय, अलका रॉय, दरियापुर बाबली से गजानन येल्ले, नवदीप येल्ले, विश्वदीप येल्ले, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, डोंगर गांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, छत्री तालाब अमरावती से आराधना रानी, किशोर गुप्ता, नाग सोंगला मगरलोट से सोंगा मगरलोट से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हयांश कुमार चंदन, मोतीनगर नई दिल्ली से अनिल, मानसी, गौरव, कविता अरोड़ा, जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानु प्रिया, कीर्ति भारती, रामगढ़ से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, सरस तालाब सुनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से भगत हेमंत कुमार राम, खेलावन सिंह पैकरा, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, कौशल गोस्वामी। लीजिए आप सभी के फरमाइश पर

आप सभी के मेल पर सुनिए गीत। फिल्म तमाशा का गीतकार है इरशाद कामिल, संगीतकार है ए आर रहमान और आवाज़ है अरिजीत सिंह का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म तमाशा का गीत, आवाज़ थी अरिजीत सिंह की। हमें अगला मेल प्राप्त हुआ है जैन मंदिर गली कुरावली से, राशिद हुसैन अंसारी, नजरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निभवानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, याशी, हनी, पूजा, सीता एवं परिवार के सभी सदस्य। कालाना राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युद्धव कड़वासरा। कस्बा बारडा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द राहुल। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। गमहरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्या जायसवाल। ग्राम पंचायत सिरकोतंगा महादेव पारा लपटरा से योगेश कुमार राजवाड़े, श्याम राजवाड़े, परमान राजवाड़े, लल्लू, बबलू, धनु, अमित कुमार, अभिजीत, गोविंद, तरुण, सकल राम, प्रियांशु, राजकुमारी, नेहा, नायरा, समायरा, खुशी, सौम्या, उमेश्वरी, मुन्नी बाई, सोनामती, माया राजवाड़े, सिमरन राजवाड़े। आप सभी के मेल पर सुनिए फिल्म गुनाह का गीत। गीतकार है प्रवीण भट्टाचार्य, संगीतकार है सचिन जिगर, आवाज़ है अलका याग्निक के।

अगला मेल प्राप्त हुआ है इंदिरा चौक तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, ग्राम पंचायत खुंदला उदयपुर, सरगुजा से जीवनधन पैकरा, घूर्णी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सोमार साय, कमलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा, ऐश्वर्या पैकरा। इन सभी के मेल पे सुनिए फिल्म।

एयरलिफ्ट का गीत गीतकार है गीतकार है अमाल मलिक और आवाज़ है अरिजीत सिंह का।

कार्यक्रम ईमेल की गूंज यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 2 बजे है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गुट। इसे हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: level talks aimed at strengthening bilateral ties. Both prime ministers
1: दीदी के गोट के विशेष प्रसारण में
2: एक वर्ष पूर्व इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी और माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा जी की शुभकामनाओं और प्रेरणा से हुआ।
1: और एक बछर के ये प्रेरणादायक यात्रा में दीदी मन के आत्मनिर्भरता के कहानी सुने।
2: आरम्भ से अब तक दीदी के गोट की ये यात्रा नारायणपुर जिले की इरक भट्टी से लेकर जशपुर के गांव तक, मैदानी क्षेत्र से सुदूर वनांचल तक पहुंची है।
1: पीएम आवास योजना में महिला मन के सहभागिता, नई चेतना जेंडर अभियान 4.0, लखपति दीदी ले लेके बैंक सखी के गोट, और बायर सेलर मीट ले लेके नमो ड्रोन दीदी, कृषि सखी और पशु सखी दीदी मन के गोट, ये सब ला सुनेन गोई।
2: समूह से पंचायत प्रतिनिधि तक का सफर, वित्तीय धोखाधड़ी जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर फ्रॉड व वित्तीय साक्षरता, 36 कला ब्रांड, ऐसे विषयों पर भी जानकारी मिली है।
1: और सुरता के चंदन घोरथन तक गर्भ के सुगंध ले महमावत महिला सशक्तिकरण के अनगिनती कहानी और अनगिनती बदलाव के अनगिनती मोती में से चमकत मोती मन ले बने माला, एक साल पाथन चंदा।
2: और इस माला की मोतियों को फेरते हैं तो पाते हैं कि दीदी के गोट कार्यक्रम ने इस एक साल में दीदियों की आवाज को एक मंच दिया है। दीदियों की हर एक कहानी में ध्वनित होता है बिहान से जुड़कर बढ़ें, चलें और नई राह गढ़ें। बिहान हर कदम आपके

0: साथ है।
1: और दीदी मन ला एक नवा पहचान मिलिस, सुनैया मन के आसला विश्वास के नवा उड़ान मिलिस। और आज पूरा एक बछर के यात्रा में दीदी के गोट कार्यक्रम सुन के सार सार निमारे दीदी मंजूरियाए हवे।
0: सुरुज दीदी आज इतनी सारी दीदियां एक साथ की सफलता की कहानी हम सुनने वाले हैं,
1: तो आवो इखर मन ले मिलथन।
2: जय बिहान दीदी हो। जय बिहान दीदी।
3: मोर नाम गीता वैष्णव, जिला बेमेतरा।
4: मोर नाम शीला मानेपुरी, जिला बेमेतरा।
5: मोर नाम श्रीमती रुक्मणी साहू, जिला राजनांदगांव।
6: मोर नाम ज्ञानेश्वरी निषाद, जिला राजनांदगांव।
7: मेरा नाम कविता अंगनपल्ली, जिला बीजापुर।
8: मेरा नाम सुनीता पुजारी, जिला बीजापुर।
1: चंदा
0: हाँ सर,
1: अभी दीदी बीजापुर ले सुनीता दीदी और कविता दीदी घला आए हैं। दीदी आप अपन बारे में बताते हो।
8: मेरा नाम है श्रीमती सुनीता पुजारी, मैं ग्राम पंचायत चेरपाल नियत नेलेनार से हूँ, जिला बीजापुर। मेरा समूह का नाम है सरस्वती स्व सहायता समूह, उसमें मैं सचिव हूँ। मेरा ग्राम संगठन का नाम है श्री कृष्ण ग्राम संगठन, उसमें मैं अध्यक्ष हूँ। समूह में जुड़ने से पहले मेरा आर्थिक स्थिति बहुत खराब था, फिर मैं समूह में जुड़ी। जुड़ने के बाद फिर मुझे पता चला कि समूह से ऋण मिलता है। मैं समूह से फिर बैंक लिंक के जरा से निकाली, और मेरा पहले से छोटा सा दुकान था, तो फिर मैं बैंक से ऋण ली और मेरा दुकान को और बढ़ाई। जब दुकान बड़ा की तो उससे जो राशि मिलता था मेरे बच्चे को पढ़ाई लिखवाई करती हूँ और मेरा घर चलाती हूँ, और मेरा अच्छा से चल रहा मेरा जीवन। एक एपिसोड सुने हैं दीदी के गोट में एपीओ के बारे में, तो प्रेरणा मिली। एपीओ का गठन हुआ है 2025 में, तो उसमें 600 दीदी लोग जुड़े हैं। उसमें मुझे बेचने में दिक्कत होता था, अच्छे दाम आने से बेचूंगी बोल के रखती तो खराब भी होता था। जब एपीओ आया तो मैं अभी अच्छे दाम में बेच सकती हूँ। बिहान से जुड़ के मेरा जीवन में बहुत बदलाव आया। मैं अभी लखपति दीदी के श्रेणी में हूँ। मैं इतने लोगों के सामने मैं अपनी सफलता कहानी को रख रही हूँ।
0: दीदी के गोट की ऐसी कौन सी विशेष अनुभव है जिसने आपको बहुत प्रभावित किया?
8: चंदा दीदी जो गाना गाते ना, हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे कौन लिखते हैं?
0: अच्छा, दीदी के गोट में आप जो गाना सुनती हैं उसकी बात कर रही हैं। वैसे तो कई बार जो दीदियां होती हैं वो खुद ही गाती हैं, लेकिन हमारे पतंजलि मिश्रा भैया हैं वो दीदियों के मन के भावों को शब्दों में आकार देते हैं, और जिसे दीदियों का स्वर मिलता है
8: सुनवाई नाम लोगों को।
0: तो लीजिए एक बहुत प्यारा सा गीत हमारी सभी दीदियों के लिए जो दीदी के गोट सुन रही है।

0: सुने चंदा
1: बहुत अच्छा लगा दीदी,
2: वाला अच्छा लगी से दीदी।
1: रुक्मणी दीदी, आप दीदी के गोट की एक वर्ष की सशक्त और सफल यात्रा की साक्षी हैं, है ना? आप लगातार सुन रही हैं, तो इस कार्यक्रम से आपका क्या अनुभव रहा, आप मन अपन बारे में बताते हैं।
3: मोर गाँव के नाम सुकुल देहान, मोर समूह के नाम है माँ बम्बलेश्वरी, ओमे मैं अध्यक्ष हूँ। CSC सेंटर चलाती हूँ दीदी, उसमें आधार से पैसा वगैरह निकालती हूँ, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरती हूँ, फिर उसी में फैंसी डाली हूँ, ग्रामीण वितरक गैस का बीमा सखी का भी काम करती हूँ, 4-5 आजीव का कर लेती हूँ मैं। दीदी के गोट में 10वां एपिसोड सुनने के बाद हमें साइबर फ्रॉड के बारे में जानकारी मिला, संगठन में ग्राम संगठन में अनुभव साझा कर पाए, OTP वगैरह आते हैं तो OTP नहीं बताना है। दीदी के गोट हम ग्राम संगठन में सुने तो हमला बहुत अच्छा लगी से, प्रेरणा मिली से,
2: हमला एक मंच मिली से जहाँ से हम अपन कहानी ला साझा कर सकथन, तो एकर लिए
3: माननीय मुख्यमंत्री जी, पंचायत मंत्री

0: चंदा।
1: हाँ दीदी।
0: अभी ये दीदी मन के सब अनुभव सुने हैं।
1: ऐसा लगता है सूरज दीदी कि इनकी कहानी सुन के भी हमारी जो दूसरी दीदियाँ हैं
0: वो मन प्रेरणा लेंगी। हाँ, है कविता दीदी, आप ये कार्यक्रम जब सुने हो तो ये कार्यक्रम के बारे में आप मन के पहली विचार का बनी?
2: मेरा गांव का नाम बोरजे है, मेरा समूह का नाम है चंद्रका स्व सहायता समूह, मेरा ग्राम संगठन का नाम है नारी शक्ति। मैं समूह में जुड़ के बैंक लिंकेज राशि से बकरी पालन कर रही हूँ। मेरे पास 30 से 40 बकरियां हैं जिससे मैं सालाना इनकम 1,30,000 तक कमाती हूँ।
1: यानी आप तो लखपति दीदी भी
2: हो, है ना? दीदी में हूँ। दीदी के गोट कार्यक्रम में पशु सखी कृषि सखी के बारे में भी सुनी हूँ, जिससे अनुभव यही मिला है कि और बेहतरीन बन सके हम लोग। बिहान से जुड़ के आजीविका को बढ़ाए, अच्छे से पशुपालन करने की प्रेरणा मिली हमें। जब से बिहान आया है हम नियत नल्लानार से जीवन ही बदल गया है।
1: क्या बात,
2: हमारे गांव परिवार की भी सब में सुधार आया है।
0: सुने चंदा दीदी। हाँ। मन के कहानी।
1: हाँ।
0: हाँ। अब यदि गीता दीदी के पारी है। दीदी, आप जैसे दीदी के गोट सुने हो, आपके विचार कोनो बदलाव आए बताते हो?
3: मोर गांव है ग्राम पंचायत झालम, मोर समूह नाम है नर्मदा माता, जिला बेमेतर है। दीदी के गोट ला सरगुजा जिला से सुने रहे पहले।
0: अच्छा,
3: तो वहाँ से मोर मन में ना विचार भी अच्छा लगी से। मैं सोचे कम खर्चा से पापड़ बना लेता हूँ और बड़ी बिजौरी बना लेता हूँ, तो मैं वो चालू करे। मार्च में कवर्धा में 20,000 के बेचे हैं और रायगढ़ में 40-45,000 के बेचे हैं। रायपुर भी आ रहे हैं बेचे बार पापड़।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
3: तो अच्छा बिकी से यहाँ तो मोर लड़कल के, तो वही पैसा के मैं फीस पटाए स्कूल की, और कुछ पैसा मैं घर बनाए हूँ, टाइल्स लगाए ओमा लगाए हूँ। दीदी के गोट कार्यक्रम जेंडर वाले माँ हम सुने हैं, तो ओमा हमार मन के जानकारी बढ़ी से। नया चेतना में तो पति दुख देते, सास दुख देते, जहाँ हमारे जीआरसी सेंटर है वहाँ पूछे बढ़ आते सुन के। हमारे गाँव में जैसे बेटी बेटा में भेदभाव रही थे, गाँव में अगर बात विवाद है, एक पति पत्नी में है, सास बहू में झगड़ा है कि मारपीट करते, वो दोनों ला समझाता ना, नहीं समझे तो फिर सक्सी सेंटर में भेजता ना। एक काम ला करे हैं, समूह में जुड़े हैं, तभी तो आज रेडियो में बोले के मौका भी मिली से, महू ला अपन कहानी रखे के मौका मिली से। एक मुख्यमंत्री जिला और पंचायत मंत्री जिला धन्यवाद कहा थी।
1: ज्ञानेश्वरी दीदी, दीदी के गोट की ऐसी कौन सी विशेष कहानी है या ऐसा कौन सा अनुभव है जिसने आपको बहुत प्रभावित किया?
4: मैं ग्राम मोखला के रवैया हरो, मोर समूह के नाम है प्रतिज्ञा स्वयं सहायता समूह, जेमे दीदी मैं बुक पर के काम करत हूँ। दीदी के गोट में मैं यहाँ तीसरा एपिसोड सुने, जेमे अनिता कश्यप दीदी है।
1: हाँ,
4: है ना, ओहा जो है कोसा के साड़ी बनाते, ओहा हर सरस मेला में ले जाते और अपन कोसा के साड़ी ला बेचते। वही सरस मेला में मैं भी अपन गढ़ कलेवा के जो है स्टॉल लगा थू, तो दीदी सन में मुलाकात बहुत हो रही से। दीदी के गोठ में सुने तो वहाँ से प्रेरणा लेके ग्राम संगठन से मैं 3,00,000 के लोन ले और वहाँ के साथ सजावट करूँ। दीदी मैं यहाँ राजनांद गांव में गढ़ कलेवा के नाम से कैंटिंग चलाता हूँ, ठेठी खुरमी अरसा ये सब चीज बनाता हूँ। और अभी वहाँ पे मोर पर डे 10-15,000 की डेली की कमाई हुआ थी। मोर साथ में 10-15 महिला और जुड़े है जेकर यहाँ से वो अच्छा से आजीविका चला थे। दीदी के गोट के हर एपिसोड में दीदी मन पूछे रहे थे सवाल।
1: हाँ,
4: है ना।
1: हाँ।
4: तो वो हुए में मोर एक सवाल रही से वे।
1: हाँ।
4: जो जवाब देव ना वही में मोला जवाब मिल गए, ये बात मोला बहुत अच्छा लगी से दीदी के गोट।
1: अच्छा, मतलब आप मतलब ये अच्छा लगी कि आप मन के सवाल के जवाब मिल गए।
4: हाँ।
1: रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोट हर एक महीने के दूसरे गुरुवार को दोपहर 2 बजे से और बस्तरिया और सरगुजिया कार्यक्रम का प्रसारण दोपहर 2:30 पर सुन पाएंगे। इस कार्यक्रम में योजना से संबंधित जिज्ञासा या प्रश्न टोल फ्री नंबर 1800-233-2398 में दोपहर 12 से 3 बजे फोन करके पूछे जा सकते हैं।
0: असीला दीदी, अब आप अपन कहानी ला बताते हो।
5: मैं बाबा घटोली से आया हूँ, जिला बेमेतर से। समूह के नाम है माँ महामाया, मैं बीओ की भी काम करता हूँ जो मैं सची हूँ।
1: दीदी के गोट सुनती हैं तो आपके मन में पहला विचार क्या आया?
5: पहला विचार आया इसकी मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। अचार पापड़ तो मैं बेचत रही हूँ, लेकिन मोला वहाँ तक कैसे जाना है, ऐसे ही कि मैं दीदी के गोट में सुन के मोला प्रेरित हुई से। तो संकुल में मैं मैडम माला बोले, मैडम मोला कोई आजीविका काम से मोला पैसा चाहिए, ऐसे ही कि बोले हूँ। तो मैडम हम दिलाई से, तो फिर मैं अचार पापड़ ला बनाया हूँ, तो गांव-गांव में बेचा था, स्कूल में भी दे देता हूँ, लेकिन मोला आगे और बढ़ना है और अच्छा क्वालिटी से बेचा हुआ, ऐसे ही कि मोर विचार है।
1: क्या बात है, आपके अचार और विचार बहुत अच्छा है।

0: मैं दीदी के गोठ में सुने रहे हैं हाँ? जो 36 कला जो ब्रांड है ओमा कैसे जाऊं मैं हाँ? मोरो जो अचार है क्वालिटी अच्छा से बेचा हुआ है, अच्छा से पैसा आवा है मोरो पास, जो मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ, ऐसे ही मोरो विचार है। इसे जो बाहर में बेचता वो कम दाम से मिलते, अगर हमारे जो 36 कला जो ब्रांड है वहाँ बेचबो तो हमारा कुछ ज्यादा फायदा मिली, ओकर से हमारा आर्थिक स्थिति है और अच्छा से सुधर जाएगी।
1: बहुत अच्छा लगा दीदी, वास्तव में हमारी कोशिश जो है वो सार्थक हो रही है, सफल हो रही है।
2: हमें वाला अच्छा लगी से दीदी, आप मन से मिलके बहुत अच्छा लगा।
1: आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरुचि दीदी, इस प्रेरक यात्रा की शुरुआत हुई थी छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर नारायणपुर जिले के माड़ के एक गाँव इरकबट्टी से। वो पहली कहानी सिर्फ एक शुरुआत नहीं थी बल्कि एक बदलाव की नींव थी।
3: हो
1: बिहान के अंतर्गत बहुत काम हो रहा है
3: हाँ।
1: और जब दीदी के गोट कार्यक्रम शुरू हुआ
3: हाँ।
1: तो आजीविका से सशक्तिकरण की अपनी अपनी कहानी लिखती दीदियों को अपनी कहानी अपनी जुबानी बताने का मौका मिला।
3: एक साल बाद ये मंच बन गया हवा संघर्ष ले सफलता के। जी हाँ, हर एक आवाज प्रेरणा हवा और हर कहानी एक नवा दिशा।
1: सही कहे,
3: पारस पखरा कस बिहान ले जुड़ के अबला ले सबला बने दीदी मन के सफलता के गोठ लेके ये दिशा में बढ़त फेर मिलबो। तब तक बर देवो विदा, जय जोहार, जय बिहान।
4: दीदी के गोठ, अभी आप ये प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे, ये आकाशवाणी रायपुर है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को है, दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना। और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने संयुक्त वक्तव्य दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया।
6: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि 10 लाख का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
7: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
6: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
5: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
1: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
0: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
2: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
3: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहें। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
2: And critical minerals.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIRF और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपनी समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नावों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप

0: फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
1: I urge our institutions to continue supporting our fishing community with knowledge, technology and finance. May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
0: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
2: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलोंग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि ये सेंटर पूरे भारत के हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था और रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
3: अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, सबसे पहले NCR दिल्ली की बात करें, तो NCR दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
2: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
4: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ।

0: भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दोपहर समाचार हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोठ। इसे हम अंबिकापुर केंद्र से प्रसारित करेंगे।

0: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान कर प्रस्तुति दीदी के गुड़ सुनवैया जम्मो महतारी दीदी भैया और श्रोता संगवारी मल्ला चंदा
1: और सूरज कर तरफ ले
0: जय बिहान।
1: चंदा
0: हाँ दीदी
1: एगो जनौला पूछो।
0: हाँ हाँ पूछना दीदी।
1: एक पेड़ में 12 नाव 30-30 के झोंथा देकर भिन्ने भिन्ने पाँव बता का हवे।
0: ला कर ला बात दीदी। ए जनौला हमन दीदी के गोट के छठवां कार्यक्रम में पूछ चुके हैं और एकर उत्तर जम सुनवैया मल्ला पता भी हवे। बाकी चल ते पूछा था तो बता दे तू। एक पेड़ मने एक बछर 12 नाव मने 12 माह 30-30 के झोथा मने महीना कर दिन और भिन्ने भिन्ने पाँव मने अलग अलग दिन मने ए जनौला पूरा एक बछर ला दिखायल।
1: अरे वाह तुला हर कार्यक्रम के एक एक बात के सुरता हवे।
0: पूरा 11 कार्यक्रम कर दीदी
1: हो गई। आज दीदी के गोट के 12वां कड़ी में संघर के दीदी मन संग श्रोता संगवारी मन संग जुड़ल मया के गांड के भी 1 साल पूरा हो गई। चंदा
0: कार्यक्रम सुनने वाला जम सुनैया मल्ला रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोट की 1 बछर कर यात्रा पूरा हो कर
1: बहुत बहुत बधाई। दीदी हो आज सुरता के 1 बछर के चंदन घोरबो रोरे मन संगे पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोट के विशेष प्रसारण में।
0: हाँ जी एक बरिस पहले एक कार्यक्रम कर सुघर शुरुआत माननीय केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी और माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा जी कर शुभकामना और प्रेरणा से हुई।
1: 1 बछर के ए प्रेरणादायक यात्रा में दीदी मन के आत्मनिर्भरता की कहानी सुने।
0: शुरू ले अब तक दीदी के गोट कर ए यात्रा नारायणपुर जिला कर इरक भट्टी ले के जसपुर कर गांव मन तक मैदानी क्षेत्र से सुदूर वनांचल तक पहुंची सवे।
1: पीएम आवास में महिला मन के सहभागिता नई चेतना जेंडर अभियान 4.0 लखपति दीदी ले लेके बैंक सखी के गोट बायर सेलर मीट ले लेके नमो ड्रोन दीदी कृषि सखी और पशु सखी दीदी मन के गोट सुनेन गोई।
0: समूह से पंचायत प्रतिनिधि तक के सफर वित्तीय धोखाधड़ी साइबर फ्रॉड और वित्तीय साक्षरता 36 कला ब्रांड जैसे विषय मन कर भी जानकारी मिली।
1: सुरता के चंदन घोड़थन तक गर्व के सुगंध ले महामहावत महिला सशक्तिकरण के अनगिनत कहानी अनगिनत बदलाव के अनगिनत मोती में से चमकत मोती मल्ले बने माला 1 साल पाथन चंदा।
0: हाँ और ये माला कर मोतीला फेरथन तब पाथन की दीदी के गुट कार्यक्रम हरे 1 साल में दीदी मन कर आवाज ला एको मंच दही सभी दीदी मन कर हर कहनी में सुनायल बिहान ले जुड़ के बढ़े चले और नवा राह गढ़े कर बात बिहान हर हर कदम राउर संगे हवे।
1: दीदी मल्ला एक नवा पहचान मिलिस सुनैया मन कर आसला विश्वास के नवा उड़ान मिलिस। आज पूरा 1 बछर के यात्रा में दीदी के गोट कार्यक्रम सुन के सार सार निवारे दीदी मन जुड़ाइन हवे।
0: सुरुज दीदी
1: हो
0: आज इतना सारा दीदी मन एक साथ हवे इनकर सफलता कर कहानी हमन सुने वाला ही
1: तो आई मिला थी।
0: जय बिहान दीदी हो।
2: जय बिहान दीदी।
3: मोर नाम गीता वैष्णव जिला बेमेतरा।
4: मोर नाम शीला मानेपुरी जिला बेमेतरा।
5: मोर नाम श्रीमती रुक्मणी साहू जिला राजनांदगांव।
6: मोर नाम ज्ञानेश्वरी निषाद जिला राजनांदगांव।
7: मेरा नाम कविता अंगनपल्ली जिला बीजापुर।
8: मेरा नाम सुनीता पुजारी जिला बीजापुर।
1: चंदा
0: हाँ दीदी
1: अब ये दे बीजापुर ले सुनीता दीदी और कविता दीदी घलो आई हमें। दीदी रौरे अपन बारे में बताते।
8: मेरा नाम है श्रीमती सुनीता पुजारी। मैं ग्राम पंचायत चेयरपाल नियत नेलेनार से हूँ जिला बीजापुर। मेरा समूह का नाम है सरस्वती स्व सहायता समूह उसमें मैं सचिव हूँ। मेरा ग्राम संगठन का नाम है श्री कृष्ण ग्राम संगठन उसमें मैं अध्यक्ष हूँ। समूह में जुड़ने से पहले मेरा आर्थिक स्थिति बहुत खराब था। फिर मैं समूह में जुड़ी जुड़ने के बाद फिर मुझे पता चला कि समूह से ऋण मिलता है। मैं समूह से फिर बैंक लिंक के जरा से निकाली और मेरा पहले से छोटा सा दुकान था तो फिर मैं बैंक से ऋण ली और मेरा दुकान को और बढ़ाई। जब दुकान बड़ा की तो उससे जो राशि मिलता था मेरे बच्चे को पढ़ाई लिखवाई करती हूँ और मेरा घर चलाती हूँ और मेरा अच्छा से चल रहा मेरा जीवन। एक एपिसोड सुने हैं दीदी के गोट में एपीओ के बारे में तो प्रेरणा मिली। एपीओ का गठन हुआ है 2025 में तो उसमें 600 दीदी लोग जुड़े हैं। उसमें मुझे बेचने में दिक्कत होता था अच्छे दाम आने से बेचूंगी बोल के रखती तो खराब भी होता था। जब एपीओ आया तो मैं अभी अच्छे दाम में बेच सकती सकती हूँ। बिहान से जुड़ के मेरा जीवन में बहुत बदलाव आया। मैं अभी लखपति दीदी के श्रेणी में हूँ। मैं इतने लोगों के सामने मैं अपनी सफलता कहानी को रख रही हूँ।
0: दीदी के गोट के ऐसा कौन सा अनुभव है जो रौरेला बहुत प्रभावित करी सवे?
8: चंदा दीदी हाँ? जो गाना गाते ना हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे कौन लिखते हैं?
0: अच्छा दीदी के गोट में रौरे जो गाना सुनती ओकर बात करती। वैसे तो कई बार जो दीदी मन होती ना वो अपने अपन गात रही। बाकी हमार जो पतंजलि मिश्रा भैया हवे वो दीदी मन के भावला शब्द में आकार देते जिला दीदी मन कर स्वर मिलेल। तले एगो बढ़िया सा गीत जम दीदी मन पर जो दीदी के गोट सुनत हवे।

0: चंदा
1: हाँ
0: गीत ला सुने ना।
1: हाँ अब रुकमणी दीदी रउरे अपन बारे में बताई।
2: मोर गांव का नाम सुकुल देहान, मोर समूह के नाम है माँ बम्बलेश्वरी, ओमे मैं अध्यक्ष हूँ। CSC सेंटर चलाती हूँ दीदी, उसमें हाँ। आधार से पैसा वगैरह निकालती हूँ, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरती हूँ, फिर उसी में फैंसी डाली हूँ, ग्रामीण वितरक गैस का बीमा सखी का भी काम करती हूँ, 4-5 आजीव का कर लेती हूँ मैं। दीदी के गोट में 10वां एपिसोड सुनने के बाद हमें साइबर फ्रॉड के बारे में जानकारी मिला, संगठन में ग्राम संगठन में अनुभव साझा कर पाए, उनको OTP वगैरह आते हैं तो

0: ओटीपी नहीं बताना है। दीदी के गोट हम ग्राम संगठन में सुने तो हमला बहुत अच्छा लगी से, प्रेरणा मिली से,
1: हमला एक मंच मिली से जहाँ से हम अपन कहानी ला साझा कर सकथन। तो एक लिए
0: माननीय मुख्यमंत्री जी, पंचायत मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
2: चंदा दीदी मन के अनुभव सुनत हन।
3: ऐसा लगत है सुरुज दीदी की दीदी मन के कहानी सुन के और दीदी मन भी प्रेरणा ले ही।
2: कविता दीदी, रउरी जब एक कार्यक्रम ला सुनें तब एक कार्यक्रम कर बारे में रउर पहली विचार का रही?
4: गाँव का नाम बोरजे है, मेरा समूह का नाम है चंद्रका स्व सहायता समूह, मेरा ग्राम संगठन का नाम है नारी शक्ति। मैं समूह में जुड़ के बैंक लिंकेज राशि से बकरी पालन कर रही हूँ। मेरे पास 30 से 40 बकरियां हैं जिससे मैं सालाना इनकम 1,30,000 तक कमाती हूँ।
2: यानी आप तो लखपति दीदी भी
4: हो, लखपति
2: है ना?
4: दीदी में दीदी के गोट कार्यक्रम में पशु सखी, कृषि सखी के बारे में भी सुनी हूँ, जिससे अनुभव यही मिला है कि और बेहतरीन बन सके हम लोग, बिहान से जुड़ के आजीविका को बढ़ाए, अच्छे से पशुपालन करने की प्रेरणा मिली हमें। जब से बिहान आया है हम नियत नल्ला नार से जीवन ही बदल गया है।
2: क्या बात,
4: हमारे गांव परिवार की भी सब में सुधार आया।
2: सुनी चंदा दीदी मन की कहानी, अब ये देख गीता दीदी कर पा रही है, इनकर बात ला सुना थन। दीदी रोरे अपन बारे में बताते।
5: गाँव है ग्राम पंचायत झालम, मोर सम्मुख नाम है नर्मदा माता, जिला बेमेतरा है। दीदी के गोट ला सर जिला से सुने रहे पहली।
2: अच्छा,
5: तो वहाँ से मन मन में ना विचार भी अच्छा लगी से। मैं सोचे कम खर्चा से पापड़ बना लेता हूँ और बड़ी बिजौरी बना लेता हूँ, तो मैं वो चालू करे। मार्च में कवर्धा में 20,000 के बेचे हूँ और रायगढ़ में 40-45,000 के बेचे हूँ, रायपुर भी आ रहे हैं बेचे भर पापड़। तो अच्छा बिकी से यहाँ तो मन लड़कल के वही पैसा के मैं फीस पटाए स्कूल की, और कुछ पैसा मैं घर बनाए हूँ, टाइल्स लगाए ओमा लगाए हूँ। दीदी के गोट कार्यक्रम जेंडर वाले में हम सुने हैं तो उमा हमर मन के जानकारी बढ़ी से। नया चेतना में तो पति दुख देते, सास दुख देते, जहाँ हमर जीआरसी सेंटर है वहाँ पूछे बड़ बातें सुन के बोला। हमारे गांव में जैसे बेटी बेटा में भेदभाव रही थे, गांव में अगर बात विवाद है, एक पति पत्नी में है, सास बहू में झगड़ा है कि मारपीट करते, तो वो दोनों ला समझाता ना, नहीं समझे तो फिर सखी सेंटर में भेजता ना। एक काम ला करे हूँ, समूह में जुड़े हूँ, तभी तो आज रेडियो में बोले के मौका भी मिली से, महूल अपन कहानी रखे के मौका मिली से। एक मुख्यमंत्री जिला और पंचायत मंत्री जिला धन्यवाद कहा।
2: ज्ञानेश्वरी दीदी रौरे अपन बारे में बताते।
3: दीदी के गोट के ऐसा कौन सा अनुभव है जो रौरेला बहुत प्रभावित करी सभी?
1: मैं ग्राम मोखला के रवैया हरो, मोर समूह के नाम है प्रतिज्ञा स्वयं सहायता समूह, जेमे दीदी मैं बुक पर के काम करता। दीदी के गोट में मैं यहाँ तीसरा एपिसोड सुने जेमे अनिता कश्यप दीदी है, है ना, ओहा जो है कोसा के
2: कोसा
1: साड़ी बनाते, ओहा हर सरस मेला में ले जाते और अपन कोसा के साड़ी ला बेचते। वही सरस मेला में मैं भी अपन गढ़ कलेवा के जो है स्टॉल लगा थू, तो दीदी सन में मुलाकात बहुत हो रही से। दीदी के गोठ में सुने तो वहाँ से प्रेरणा लेके ग्राम संगठन से मैं 3,00,000 के लोन ले और वहाँ के साथ सजावट करूँ। दीदी मैं यहाँ राजनांदगांव में गढ़ कलेवा के नाम से कैंटिंग चलात हूँ, ठेठी खुरमी अरसा ये सब चीज बनात हूँ, और अभी वहाँ पे मोर पर डे 10-15,000 की डेली के कमाई हुआ थी। मोर साथ में 10-15 महिला और जुड़े है जेकर यहाँ से वो अच्छा से आजीविका चला थे। दीदी के गोट के हर एपिसोड में दीदी मन पूछे रहे थे सवाल, है ना, तो वही में मोर एक सवाल रही से वे, तो जो जवाब देव ना वही में मोला जवाब मिल गए। ये बात मतलब बहुत अच्छा लगी से दीदी के गोट।
2: अच्छा, मतलब आप मतलब ये अच्छा लगी कि आप मन के सवाल के जवाब मिल गए।
3: संगीवो राउर मन रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोट हर एक महीना कर दूसर गुरुवार के दोपहरिया 2 बजे से और बस्तरिया और सरगुजिया कार्यक्रम कर प्रसारण दोपहरिया 2:30 पर सुन पाप। एक कार्यक्रम में योजना ले संबंधित जिज्ञासा या प्रश्न टोल फ्री नंबर 1800-233-2398 में दोपहरिया 12 बजे से 3 बजे

0: स्थिति है और अच्छा से सुधर जी।
1: बहुत सुधर लगी दीदी, हमर जो कोशिश हवे वो सार्थक होत है।
2: हम अच्छा लगी से दीदी आप मन से मिलके
1: रवरी जम झल्ला यहाँ आए पर बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज दीदी
3: हो
1: ये पेरक यात्रा कर शुरुआत ना हो रही, छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर नारायणपुर जिला के माड़ के एक गाँव इरक भट्टी से। वो पहला कहनी सिर्फ एगो शुरुआत नहीं रही बल्कि एगो बदलाव कर नींव रही। बिहान कर अंतर्गत बहुत काम होत है और जब दीदी के गोट कार्यक्रम शुरू हुई तो आजीविका से सशक्तिकरण कर अपन अपन कहनी लिखत दीदी मल्ला अपन कहनी अपन जुबानी बताए कर मौका मिलीस।
4: एक साल बाद ये मंच बन गई सवे संघर्ष ले सफलता के, जहाँ हर एक आवाज प्रेरणा हवे और हर कहानी एगो नवा दिशा। पारस पखरा कस बिहान ले जुड़ के अबला ले सबला बन के दीदी मन के सफलता के गोट लेके ए दिशा में बढ़त फेर मिलबो। तब तक बर दे विदा,
5: जय जोहार जय बिहान।
6: दीदी के
7: दीदी के गोट कार्यक्रम हम अंबिकापुर केंद्र से प्रस्तुत कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी और गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम के शुरुआत में सुनिए जगजीत सिंह के आवाज़ में गज़ल, रचनाकार हैं मेहदी हसन।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अगला गजल पेश है गुलाम अली के आवाज में, रचनाकार है हसरत मोहानी।

0: अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली के आवाज़ में गज़ल, और इसी के साथ गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। आइए एक नज़र डालें हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे पत्रों पर आधारित फरमाइशें गीतों का कार्यक्रम मनभावन। रात्रि 10 बजे सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामनी। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम ईमेल की गूंज। इसके पहले आप सुन सकेंगे 9:15 पर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम चित्रपट। रात 8 बजे प्रस्तुत करेंगे आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। 7:30 पर आप आनंद लें आप सुन सकेंगे किसान वाणी, जिसमें आप सुनेंगे मौसम की जानकारी और मौसम आधारित कृषि परामर्श। 7:20 पर सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल। शाम 7:05 पर आनंद लीजिए रजनीगंधा का। शाम 6:30 पर सुनेंगे फिल्मी संगीत का कार्यक्रम माधुरी। 6:20 पर हम आपको सुनवाएंगे सादरी और छत्तीसगढ़ी लोकगीत का कार्यक्रम गोधुली। 6:05 पर सुनेंगे कार्यक्रम विचार बिंदु। 5:30 पर प्रस्तुत करेंगे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। ये थी हमारे केंद्र से आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाली शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। इस दौरान एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में हम पुनः हाजिर होंगे।

मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। हमारी संध्याकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये मकनपुर, नवाडी, पोड़िपा, पेंडारी, सिंघरा, भरदा, गौरा, मदन नगर, गणेशपुर, चिटका, बहरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के राजपुर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधवा, गोपालपुर, मुरका, अतौरी, ठरकी, चिनिया, कनकपुर, टकिया, शिवपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 8 है। ये पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मसगा, सत्तीमुड़ा, लक्ष्मणगढ़, ससकालो, तेंदुटिकरा, मानपुर, बरिमा, कुदारीडीह, केसरा, सरभंजा, ललिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, कांसाबेल और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये कुंजारा, श्रीटोली, मयूरचुंदी, उपका पानी, भड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, साजा पानी, तीता पाकेर, सोनाजोरी, घंताडांड, परसाडांड, पेटा, बिमड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 105 है। ये महाराजगंज, बंगरसूता, कूड़ेकेला, बोजिया, सिंघीछा, बनहर, लोटान, कंचीरा, पोटिया, आमगांव, झगरपुर, सागरपाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा और करतला में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये कटकोना, जिलगा, गीत कुंवारी, लबेद, बोतली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के केंदई, जडगा, एतमानगर और पसान में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये मड़ई, कोदवारी, भोड़ूपानी, कठमोरगा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरीकादर, बनिया, चोटिया, लालपुर, सेमरहा, बोकरा, मुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये झिंगोल, तराईमाल, नागदरहा, पंडरीपानी, भैंसगढ़ी, बड़गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी, तालदादर, पकरीत के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये ओड़, अमलोर, ताराझर, डडईपानी, बुडार, जिडार, सिहार, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए गैर फिल्मी और फिल्मी भजनों पर आधारित कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं अनूप जलोटा के स्वर में यह प्यारा सा भजन। गीत को लिखा है अनूप जलोटा ने एवं संगीत दिया है चंद्र कमल ने।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आइए सुनते हैं जुबिन नौटियाल की प्रस्तुति इस भजन के रूप में।